एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक्षा मत 948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि तदनुसार 7 जुलाई सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम खेती की बातें की आज की इस कड़ी में मिट्टी जांच महत्व एवं तकनीकी। जी हां किसान भाइयों, मिट्टी के रासायनिक परीक्षण के लिए पहली आवश्यक बात है खेतों से मिट्टी के सही नमूने लेना। न केवल अलग अलग खेतों की मृदा की आपस में भिन्नता हो सकती है बल्कि एक खेत में अलग अलग स्थानों की मृदा में भी भिन्नता हो सकती है। परीक्षण के लिए खेत में मृदा का नमूना सही होना चाहिए। किसान भाइयों, मृदा का गलत नमूना होने से परिणाम भी गलत मिलेंगे। खेत की उर्वरा शक्ति की जानकारी के लिए ध्यान योग्य बात ये है कि परीक्षण के लिए मिट्टी का जो नमूना लिया गया है वह आपके खेत के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हो। रासायनिक परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। पहला तो फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए, दूसरा ऊसर और आम्लिक भूमि के सुधार और उसे उपजाऊ बनाने का सही ढंग जानने के लिए, और तीसरी जरूरी बात वो ये कि बाग और पेड़ लगाने हेतु भूमि की अनुकूलता तय करने के लिए। मिट्टी का सही नमूना लेने की विधि के बारे में जो तकनीकी बातें हैं हम आपको बता दें। सबसे पहले तो आप रासायनिक खादों के प्रयोग के लिए नमूना लें। जो भाग देखने में मृदा की किस्म और फसलों के आधार पर जल निकास और फसलों की उपज के दृष्टिकोण से भिन्न हो उस प्रत्येक भाग की निशानदेही लगाएं और प्रत्येक भाग को खेत माने। दूसरी बात, नमूना लेने के औजार जैसे कि मृदा का सफल नमूना लेने के लिए मृदा परीक्षण ट्यूब यानी सॉइल ट्यूब, बर्मा फावड़ा और खुरपे का प्रयोग किया जा सकता है। नमूना एकत्रित करने की विधि भी हम आपको बता दें किसान भाइयों। सबसे पहले तो मृदा के ऊपर की घास फूस आप साफ कर लें। यदि आपको फावड़े या खुरपे का प्रयोग करना हो तो वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। अब एक ओर से ऊपर से नीचे तक 10 से 12 अलग अलग स्थानों जैसे बेतरतीब ठिकानों से मृदा की टुकड़ियां ले लें और उन पर सबको एक भगोने या साफ कपड़े में इकट्ठा करें। अगर खड़ी फसल से नमूना लेना हो तो मृदा का नमूना पौधों की कतारों के बीच खाली जगह से लें। जब खेत में क्यारियां बना दी गई हों या कतारों में खाद डाल दी गई हो तो मृदा का नमूना लेने के लिए विशेष सावधानी रखें। एक बात और किसान भाइयों, रासायनिक खाद की पट्टी वाली जगह से नमूना ना लें। जिन स्थानों पर पुरानी बाड़ सड़क हो और जहां गोबर खाद डाली गई हो वहां से मृदा का नमूना ना लें। एक खेत में भिन्न भिन्न स्थानों से तसले या कपड़े में इकट्ठे किए हुए नमूने को सुखा लें। एक खेत से एकत्रित की हुई मृदा को अच्छी तरह मिलाकर एक नमूना बनाएं और उसमें से लगभग आधा किलो मृदा का नमूना लें जो समूचे खेत का प्रतिनिधित्व करता हो। उसके बाद जो जरूरी बात है वो है लेबल लगाना। हर नमूने के साथ नाम, पता और खेत का नंबर का लेबल लगाएं। अपने रिकॉर्ड के लिए भी उसकी एक नकल रख लें। दो लेबल तैयार करें, एक थैली के अंदर डालने के लिए और दूसरा बाहर लगाने के लिए। लेबल पर कभी भी स्याही से ना लिखें, हमेशा बॉल पेन या कॉपिंग पेंसिल से लिखें। सूचना पर्चा भरना भी जरूरी है किसान भाइयों। खेत और खेत की फसलों का पूरा ब्यौरा आप सूचना पर्चा में लिखें। यह सूचना आपकी मृदा की रिपोर्ट और सिफारिश को अधिक लाभकारी बनाने में सहायक होगी। सूचना पर्चा कृषि विभाग के अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। मृदा के नमूने के साथ सूचना पर्चा में कुछ बातों की जानकारी अवश्य दें, जैसे कि खेत का नंबर का नाम, अपना पता, नमूने का प्रयोग, बीज वाली फसल या और दूसरी किस्म हो, मृदा का स्थानीय नाम, भूमि की किस्म, सिंचाई वाली है या बारानी है, सिंचाई का साधन, प्राकृतिक निकास और भूमि के नीचे पानी की गहराई, भूमि का ढलान, फसलों की अदल बदल, खादों या रसायनों का ब्यौरा जिसका प्रयोग किया गया हो, कोई और समस्या जो भूमि से संबंधित हो। इसके बाद जो जरूरी बात है वो है नमूने बांधना। हर नमूने को एक साथ कपड़े की थैली में डालें। ऐसी थैलियों में नमूने न डालें जो पहले खाद आदि के लिए प्रयोग में लाई जा चुकी हो या किसी और कारण से खराब हो। एक लेबल थैली के अंदर भी डालें। थैली अंदर से बंद करके उसके बाहर भी एक लेबल लगा दें। 3 या 5 साल के अंतराल पर अपनी भूमि की मिट्टी का परीक्षण एक बार जरूर करवा लें। एक पूरी फसल चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना अच्छा है। वर्ष में जब भी भूमि की स्थिति नमूने लेने योग्य हो नमूने अवश्य एकत्रित कर लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मृदा का परीक्षण केवल फसल बोने के समय करवाया जाए। किसान भाइयों, इसके साथ ही हमें कार्यक्रम खेती की बातों से अनुमति दीजिए।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानि और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ना जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

बौद्धिक क्षमता में वृद्धि की चाहत तो सभी रखते हैं, खास तौर पर विद्यार्थी। उनमें कुछ विशेष ललक होती है। ज्यादातर विद्यार्थी किसी ऐसे नुस्खे, ऐसी तकनीकों की तलाश में रहते हैं जो उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा दे। यही सत्य जिंदगी के दूसरे दायरों में नजर आता है। बुद्धिमान हर कहीं बाजी मार ले जाते हैं, जबकि बुद्धिहीन विवशता में हाथ मलते रह जाते हैं। जबकि स्थिति यह होती है कि बुद्धि की क्षमता हम स्वयं बढ़ा सकते हैं। हम निरंतर प्रयास करें, लगातार प्रयास करें, मेहनत करें तो बुद्धि बढ़ती जाती है। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? भारतीय विद्याओं के परम विद्वान डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के विचार इस संदर्भ में बहुत ही माननीय हैं। जिन्हें भी भारतीय संस्कृति, दर्शन, आध्यात्म विद्या में रुचि है, उनके लिए गोपीनाथ कविराज का नाम अपरिचित नहीं है। कविराज जी महान विद्वान होने के साथ साथ अनुभवी साधक भी थे और चिंतक भी। उन दिनों जब वे प्रोफेसर थे, उनसे एक छात्र मिला। वो बहुत ही दुखी था, निराश, हताश था। कविराज जी ने उसे बड़े स्नेह के साथ घर आकर मिलने के लिए कहा। स्नेह पाकर उस छात्र के मन में कुछ आशा बंधी और वह उनके घर मिलने चला गया। प्रणाम करने के साथ उसने अपनी व्यथा सुनाई। उसकी परेशानी यह थी कि नियमित उपस्थिति के बावजूद उसे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अभाव के कारण बहुत ही पीछे था, त्रस्त था। अपनी इसी असफलता के कारण वह एक दो बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका था। उसकी इस मनोदशा से द्रवित होकर गोपीनाथ जी ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निर्बुद्धि कालिदास को परम बुद्धिमान कवि बना देने वाली जगत माता तुम्हें भी बुद्धि अवश्य देंगी। बस इसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास करने होंगे। कविराज के इन शब्दों को सुनकर उस छात्र के अंदर आशा और उत्साह का संचार हो गया। पंडित गोपीनाथ जी से उसने कहा, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए पहला उपाय क्या है? उन्होंने कहा, स्थिरता। ध्यान रहे, हमारी चंचल वृत्तियां ही हमारे बौद्धिक विकास को रोक देती हैं। इस अवरोध को हटाने के लिए आवश्यक है कि तुम धीरे धीरे ही सही क्रमिक रूप से निरंतर 3-4 घंटे बैठकर पढ़ने का अभ्यास करो। शरीर के स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाएगा, साथ ही बुद्धि भी विकसित होगी। और इसी क्रम में दूसरा बिंदु है एकाग्रता। इसके लिए जरूरी

है अपने अध्ययन विषय पर एकाग्र बन जाओ। न समझ आने के बावजूद भी उसे पूरी एकाग्रता के साथ समझने की कोशिश करो। निरंतर एकाग्रता का अभ्यास तुम्हारी समझ को विकसित करेगा। और इसी के साथ है जिज्ञासा, यानी जानने समझने की जागरूकता। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी तो पढ़ने की लालसा बढ़ेगी, तुम अधिक जानना चाहोगे। और इसी के साथ ही आवश्यक है बुद्धिमानों की संगति। तुम्हारी संगति जैसी होगी तुम ऐसे ही बन जाते हो, इसलिए अच्छे लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति रखो तो तुम्हारे विचार भी उन्हीं के समान हो जाएंगे। और इसी के साथ है निराशा को हटा देना, आशावादी बन जाना। तुम आशावादी बनोगे तो तुम्हारे बुद्धि का विकास हो ही जाएगा। इसलिए निरंतर प्रयास करो, एकाग्र रहो, आशावान बनो, अच्छे लोगों की संगति करो। ऐसा करने से बुद्धि विकास होगा। वह छात्र बहुत ही खुश हुआ और उसने ऐसा ही किया। आगे चलकर उसे हर क्षेत्र में सफलता मिली। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि विकास के लिए आवश्यकता है एकाग्रता की, प्रयास की और सतत प्रयास की। ऐसा करने से हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए जो भी कार्य आप करें उस पर एकाग्र हो जाएं। लेकिन आज के समय में चिंता की यह बात है कि लोग एकाग्र नहीं हो पाते हैं, मन चंचल रहता है, वो जल्दी से जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, इसलिए छोटा रास्ता अपना लेते हैं और इसी में उन्हें बार बार असफलता भी मिलती है। इसलिए सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, स्थिरता की आवश्यकता है। स्थिर रहिए, आगे बढ़िए, आपकी बुद्धि का विकास होगा।

अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज में आराधना। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता लकवा कारण एवं निदान। भेंट वार्ता करें डॉक्टर कुमार विजय।

0: दोस्तों, बदलती जीवन शैली ने हम लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है और बहुत सारी बीमारियां भी आने लग गई हैं। एक ऐसी ही बीमारी है पक्षाघात, जिसे हम लकवा कहते हैं या हम पैरालिसिस भी कहते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि लकवा होने का कारण क्या है, कैसे हम इन चीज़ों से अपना बचाव करें और यदि इस तरह की बीमारी हो जाती है तो इसका उपचार कैसे किया जाता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर कुमार विजय आनंद। आप न्यूरो फिजिशियन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। बदलती जीवन शैली के कारण बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश करती जाती है। एक ऐसी बीमारी है पक्षाघात, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं या स्ट्रोक भी कहते हैं या लकवा भी कहते हैं। ये लकवा होने का क्या कारण है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, ब्रेन स्ट्रोक, जिसे सामान्य भाषा में लकवा या पैरालिसिस कहते हैं, ये मुख्यतः दो तरह का होता है। एक हेमरेजिक स्ट्रोक और एक इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक अगर हम सामान्यतः समझाएं तो वो है कि जो खून की नली जो ब्रेन को सप्लाई करती है उसमें अचानक थक्का जम जाता है, जिससे रक्त का प्रभाव ब्रेन के किसी एक हिस्से में कट ऑफ हो जाता है, उसका बाधित हो जाता है, उसके कारण मरीज को लक्षण होते हैं। और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जैसे ब्रेन हेमरेज सामान्यतः आम भाषा में लोग बोलते हैं, उसमें खून की नली में रप्चर कर जाती है, फट जाती है और खून का हिस्सा बहकर एक थक्का जम जाता है ब्रेन के एक हिस्से में और उसके कारण प्रॉब्लम होती है। दोनों ही स्ट्रोक में जो लक्षण होते हैं वो अचानक उत्पन्न होते हैं। मरीज को अचानक किसी एक तरफ हाथ या पाँव में कमजोरी होने लगती है, आवाज़ में लड़खड़ाहट होती है, फेस का टेढ़ापन हो जाता है, चलने में बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है।

0: होता है, देखने दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है, दृष्टि में उसको असुविधा हो सकती है। तो ये सब लक्षण स्ट्रोक के हैं और ये अचानक उत्पन्न होते हैं मरीज में, सडन ऑनसेट होता है इनका। तो ये इन सब लक्षण को पहचानना ज़रूरी है, इसके बारे में सोसाइटी को अवेयर करना इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए भी कि अगर मरीज को जितनी जल्दी उपचार मिले उतना ही मरीज की जान को हम बचा सकते हैं या जो डिजेबिलिटी है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी फैमिली मेम्बर्स में किसी को स्ट्रोक के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उनको अगर फैमिली मेम्बर्स जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो जल्द पहचानें और मरीज को हॉस्पिटल लेके जाएं और उनका उपचार तुरंत स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। या और जो उसके आउट कारण डिजेबिलिटी होती है, जो विकलांगता आती है, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको उसकी रिकवरी अच्छी होती है जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा।
1: डॉक्टर साहब, ये जो आप लक्षण बता रहे हैं, इस लक्षण के कितने समय बाद इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है?
0: नहीं, जैसे ही मरीज को पक्षाघात का अटैक होता है लक्षण इमीडिएटली स्टार्ट होते हैं। तो अगर इमीडिएटली स्टार्ट होने पर उसकी पहचान कर उसको अगर तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं और उनका उपचार अगर तुरंत शुरू हो तो उतना ही मरीज को फ़ायदा मिलता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, एज उनमें एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। बढ़ती उम्र के कारण लकवा होने की जो रिस्क है वो बढ़ती जाती है। दूसरा है जो और बीमारियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इनके कारण स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ता है। साथ में जो जीवन शैली की बात की आपने, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट है, तनावपूर्ण जीवन हो गया है आजकल, जो लाइफ है बहुत फास्ट हो गई है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव लाइफ है, उसमें तनाव काफ़ी बढ़ गया है। तो तनाव को लोग मैनेज नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। खान पान का जो है वो जंक फूड का लेना, खान पान की जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, हेल्दी डाइट है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, इनकी मात्रा देख रहा हूँ कि कम होती जा रही है। और लोग जंक फूड्स और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा उनका रुझान रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लोग योगा, प्राणायाम, वॉकिंग और एक्सरसाइज, इसको अपने जो डेली रूटीन में इंकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं व्यस्तता के कारण या किसी और मोटिवेशन की कमी के कारण, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। और कुछ लोग हैं जो नशे में इंडल्ज होते हैं, किसी तरह के नशे का सेवन, खास करके स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन, ये स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है।
1: जी, किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाता है और वो नज़दीकी चिकित्सालय जाकर अपना इलाज शुरू करवा देता है, तो जो रोगी है वो कितना प्रतिशत तक ठीक हो जाता है?
0: एक मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो इसमें जो मैंने पहले बताया कि स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, तो उसमें जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, इसमें कि खून की नली में क्लॉट हो जाता है और उसमें जो रक्त का प्रभाव बंद हो जाता है, उस स्ट्रोक में एक मेडिसिन है जो हम लोग अगर गोल्डन आवर में दें, जो 4.5 घंटे का होता है, अगर मरीज उसके अंदर अस्पताल पहुंचता है और हम लोग वो मेडिसिन उनको दे पाएँ, तो वो जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो सकता है और रक्त का प्रभाव पुनः स्थापित हो सकता है। तो जो इसको रीपरफ्यूजन थेरेपी, थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी कहते हैं, तो अगर हम ये मरीज को दे पाएँ विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, जो जैसे
1: गोल्डन घंटे के अंदर,
0: हाँ 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर
1: जी,
0: तो मरीज को बहुत फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है कि उस पूरी तरह ठीक हो सकता है या फिर जो सीवियरिटी है वो कम हो सकती है। अगर उसके बाद मरीज पहुंचते हैं फिर भी उसमें स्ट्रोक होने के बाद और भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, स्वेलिंग बढ़ती है ब्रेन में और ब्रेन में जो प्रेशर है वो बढ़ता है, तो उन सब चीज़ों को सही समय पर उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना इम्पॉर्टेंट है। तो वो अगर उपचार सही समय पर हम जल्दी स्टार्ट कर पाएँ तो मरीज की जान बच सकती है और हो सकता है कि मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। कितना ठीक होगा ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जल्दी उपचार मिलने से उनकी डिजेबिलिटी कम होगी, जान बचाई जा सकती है और सुधार होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अब हेमरेजिक स्ट्रोक में, जिसमें मैंने बताया कि खून की नली फट जाती है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को नियंत्रित रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जब मरीज पहुंचते हैं तो उनका रक्तचाप बहुत ही ज़्यादा होता है उस समय, तो इमीडिएटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना जल्दी हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर पाएंगे, रक्त का जो प्रभाव है, जो रप्चर होके फैल रहा है, उसको हम रोक पाएंगे। और साथ में अगेन जो ब्रेन में और भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसके चलते जो स्वेलिंग बढ़ रही है वो हम उसको
1: कम कर सकते हैं
0: इलाज के

0: कुछ पेशेंट्स इसमें सर्जिकल कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खून का थक्का बहुत फैल जाता है, उनमें फिर हम लोग न्यूरोसर्जन को कॉल करते हैं। न्यूरोसर्जरी एक एक एक एक टीम वर्क होता है, ये न्यूरोलॉजिस्ट का, न्यूरोसर्जरी का और आईसीयू की टीम होती है, तो फिर हम लोग उसमें उनकी सर्जरी।
1: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता लकवा कारणम निदान। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर कुमार विजय आनंद। हम आकाशवाणी के डाल्टन केंद्र से बोल रहे हैं।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य जकार्तायां इंडोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इंडोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमंत्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 वर्षादारभ्य भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिकसहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जक सांस्कृतिक प्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीनसभ्यतायाः, संस्कृतेः, आध्यात्मिकसम्बन्धानाञ्च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वयसमूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिकभक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चंपतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉक्टर अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथितदान अनियमिततायाः प्रकरणे एफआईआर इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् 8 जनाः निगडिताः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेश मंत्री कतर देशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तु विभागेन अद्य गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उपहिमालयी पश्चिम बंग, सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु, आंध्र प्रदेशे, गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे, अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, छत्तीसगढ़े, नागालैंडे, मणिपुरे, मिजोरम राज्ये, त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं, झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेन उक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री क्षमा करें कर इसको दोबारा सुन लें, इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
3: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात

0: the second half stoppage time to secure the victory. Spain advanced to the quarterfinals for the first time since winning its only World Cup title in 2010 in South Africa. They will now face either the USA or Belgium at the Los Angeles Stadium on Friday. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बता दें, प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:15 पर आप सुनेंगे राग रंग। स्वर सरिता का समय होगा 7:45 पर। 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। 8:45 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन। 9 बजे का समय होगा जोहार पलामू का, जिसमें आप सुनेंगे आज का सुविचार, स्वास्थ्य सुझाव और स्थानीय गतिविधियों का एवं फिल्म संगीत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय होगा 9:30 पर। 10:10 पर हम चलेंगे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती में सेहतनामा। 11 बजे का समय होगा मुंबई से विविध भारती में रंग तरंगा। यादव के महफिल आप सुनेंगे 12 बजे। 1 बजे का समय होगा दिल्ली से हिंदी में समाचार का। 1:05 पर सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। विविध भारती में आप सुनेंगे सुरीला सफर। 1:20 पर मुंबई से। 2 बजे आप सुनेंगे दिल्ली और मुंबई से अंग्रेजी में समाचार। हिंदी में समाचार का समय होगा 2:15 पर दिल्ली और मुंबई से। 2:30 पर सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सदाबहार नगमे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 2:55 पर। 3 बजे का समय होगा विविध भारती का, जिसमें आप सुनेंगे सखी सहेली। 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। 5 बजे आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 5:02 पर हम चलेंगे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती में छाया गीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:00। 6:02 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम का समय होगा किसानवाणी 6:30 पर। 6:55 पर आप सुनेंगे रांची से विज्ञापन, रांची से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:00। 7:10 पर आप सुनेंगे रांची से जिले में आजकल, 7:15 पर आप सुनेंगे एक रंग, 7:45 पर आप सुनेंगे खुले आकाश के तहत काव्य पाठ, चित्रपट संगीत का समय होगा 8:00। 8:30 पर आप सुनेंगे देश गान, 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से, 9:00 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार दिल्ली से, 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के फरमान मुंबई से, 10:00 का समय होगा रजनीगंधा का, 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से, 11:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। तो ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं राग रंग।

0: पुणे से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर

0: राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है, भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है, इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
0: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं, मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं, 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं, 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से

0: इसे प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने SC ST सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की 1.5 लाख रुपए। पारिवारिक आय सीमा अब हुई 8 लाख। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में जनसभा को किया संबोधित, कहा झारखंड में भाजपा की होगी अगली सरकार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र से की 9 घंटे पूछताछ, आज रामेश्वर उरांव को केंद्रीय जांच एजेंसी ने किया तलब। ओडिशा में आज आयोजित होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, झारखंड के DGP और वरिष्ठ नेता अंतरराज्यीय सुरक्षा पर करेंगे मंथन। और राज्य में लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण SC ST अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा भी बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। पात्र उम्मीदवार इस योजना के लिए 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि भारी बारिश के बावजूद सभा में उमड़ी भीड़ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि झारखंड में अगली सरकार भाजपा की बनने जा रही है।
1: जो माहौल दर्शा रहा है, ये हाल की भूमि जहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में आकर इस उर्वरक का रखाना को स्थापित किया था, वो यही दर्शाता है कि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया। बारिश इतनी थी, मैं खुद कंफ्यूजन में था कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन इतनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आना पहुँचना ये दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
0: शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पुत्र रोहित उरांव से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने उनसे शराब कारोबार में भूमिका और कारोबारियों से संबंधों पर सवाल किए। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को आज पूछताछ के लिए तलब किया गया है। गैंगस्टर प्रिंस खान से धमकी मिलने के बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद SSP प्रभात कुमार से मुलाकात की। विधायक को अब 4 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। चटर्जी ने अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की। उन्होंने बोकारो में सांसद ढुलू महतो के बयानों को अमर्यादित भी बताया।
2: देखिए, नेटवर्क जब तक नहीं टूटेगा तब तक सिर्फ सुरक्षा गार्डों को बढ़ा देना ही सुरक्षित नहीं हो जाता। तो ऐसे तमाम क्रिमिनल्स, इनको एक भय पुलिस का होना चाहिए, तो इनकी नेटवर्क टूटनी चाहिए। जो इनको संरक्षण दे रहा है उन पर ग्रिप होना, तभी जाके हम समझते हैं जो ऐसे लोग जो है क्राइम से पास आएंगे।
0: रांची में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने SIR को लेकर मतदाता गणना प्रपत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को 29 जुलाई तक घर घर जाकर 100% काम पूरा करने का निर्देश दिया। लापरवाही बरतने पर सिल्ली विधानसभा के 2 BLO पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार ने झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार के नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य के पूर्व DGP अजय कुमार सिंह को रेरा का नया अध्यक्ष और नलीन कुमार को सदस्य मनोनीत किया गया है। उड़ीसा में आज आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के DGP और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में अंतरराज्यीय सुरक्षा, सीमा विवाद और उग्रवाद नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक में पूर्वी राज्यों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR

0: न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला की ऐतिहासिक रथ यात्रा के संरक्षण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्थायी रथ आसन भवन के निर्माण की घोषणा की है। कल रथ निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए उन्होंने इसे सांस्कृतिक धरोहर बताया। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में तेज हवा और वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी में सर्वाधिक 79.8 मिलीमीटर और रांची में 37 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि कई अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, खुले स्थानों पर नहीं जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: रांची में लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सरकार पर शहर की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
2: पची की जो हालत है, एक बारिश में पूरा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। जब रोशनी खलखो जी दिल्ली जाकर वार्ता की तो उन्हें ये जानकारी प्राप्त हुई कि राज्य सरकार से नगर विकास विभाग से जो योजना बना के 2500 करोड़ का मांगा गया था, 600 करोड़ का ही योजना भेजा गया।
0: इस पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम एक स्वतंत्र इकाई है जिस पर भाजपा का ही कब्जा है।
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का यही फितरत कि जब वो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जवाबदेही से भागेंगे तो उसका छिगरा विपक्ष के सरकार के ऊपर, और यही परिस्थितियां रांची में भी है, झारखंड में। नगर निगम को किसी भी प्रकार का फंड का किल्लत नहीं, लेकिन चूंकि अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी से भागना है तो आप कार्य योजना बना करके दो।
0: रांची में अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का रोमांच जारी है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से आए लगभग 438 नन्हे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में इस स्तर की शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में बड़ा कदम है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बदलाव की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, चढ़ावा चोरी मामले में चंपत व मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण अंतरिम महासचिव। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीएम हेमंत सोरेन ने की पर्यटन, खेलकूद, युवा कार्य विभाग की समीक्षा, खिलाड़ियों का डाटाबेस बनाकर दी जाएगी सहायता। प्रभात खबर के शब्द हैं, रांची के एक ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाने की तैयारी में था, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने प्रिंस खान के गुर्गे को पैर में मारी गोली। दैनिक जागरण लिखता है, नवजात की मौत के बाद रिम्स की तीसरी मंजिल से कूदी मां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने एससी एसटी सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की 1.5 लाख रुपए, पारिवारिक आय सीमा अब हुई 8 लाख। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में जनसभा को किया संबोधित, कहा झारखंड में भाजपा की होगी अगली सरकार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र से की 9 घंटे पूछताछ, आज रामेश्वर उरांव को केंद्रीय जांच एजेंसी ने किया तलब। ओडिशा में आज आयोजित होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, झारखंड के डीजीपी और वरिष्ठ नेता अंतर्राज्यीय सुरक्षा पर करेंगे मंथन। और राज्य में लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात की जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म गंगा जमुना का ये गाना, गंगा जमुना सरस्वती का ये गाना।

और इसी गीत के साथ गीत गुंजन से हमें आगे दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन में फिल्म बाजीगर का ये गाना विनोद राठौर की आवाज़ में। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं जोहार पलामू।

जोहार पलामू सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार वाला नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार से। हमारे आज के सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं हमारी सबसे अच्छी शिक्षक हमारी गलतियां होती हैं, क्योंकि वही हमको कुछ नया सिखलाती है। जी हाँ, कुछ छोटी छोटी गलतियाँ जब हो जाती हैं तो हमें एक नए कार्य को करने का एक अच्छा अनुभव मिल जाता है और एक नया सीख मिलता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं मौसम का। तो आज का अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 27 डिग्री। हम बातें और भी करेंगे मगर सुनते ये प्यारा सा।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार आप

0: सबको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से, पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
1: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
1: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
1: जी
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
1: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
1: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
1: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
1: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
1: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
1: जी
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
1: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए

0: जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए।

0: अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादली।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ आओ चलो
5: आओ।

0: परसों मौका दे। तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
0: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा

0: देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ चलो आओ खाते रहो।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछ कर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं। कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहाँ क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते। लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज चलते हैं मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती में सेहतनामा अब से कुछ ही पलों में।

0: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने POJK के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता रविवार को तेज हो गई। मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों से गोलाबारी और झड़पों की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएगी। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के तटीय और घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। पालघर, रायगढ़ और नासिक तथा पुणे के घाटी क्षेत्रों के लिए मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto are currently holding the bilateral meeting at Presidential Palace in Jakarta, Indonesia. Earlier, Prime Minister Modi received a grand ceremonial welcome at the Presidential Palace in Jakarta, marking the beginning of his official engagements. Indonesian President Subianto and Prime Minister Modi introduced the members of their respective delegations to each other at the Presidential Palace, underscoring the spirit of friendship and cooperation between the two nations. Prime Minister Modi also signed guestbook at Istana Merdeka, the Presidential Palace. As Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit the iconic Prambanan Temple tomorrow, the UNESCO World Heritage Site continues to attract tourists from across the globe. Renowned for its magnificent 9th century Hindu architecture, the temple stands as one of Indonesia's most celebrated cultural landmarks. Dedicated to Shiva, Vishnu and Brahma, Prambanan Temple reflects the centuries-old cultural and civilizational links between India and Indonesia. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said, the ministry, established by Prime Minister Narendra Modi in 2021, has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive. The 6th batch of pilgrims for the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu early this morning amid tight security arrangements. Akashwani Jammu correspondent reports that a total of 8,815 pilgrims left for the holy cave shrine in Kashmir. The smooth movement of yatris, a total of 363 vehicles were deployed. The yatra convoy moved under elaborate security cover with escort arrangements by police, CRPF and other security agencies to ensure the safe passage of pilgrims on both routes. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. Indian equity benchmark indices traded higher this morning amid positive global cues and crude oil prices hovering around the $70 a barrel mark. Sensex jumped over 200 points to hit an intraday high of 78,504 in early trade, while Nifty was trading around 60 points higher at 24,488. Sectorally, IT, banking and financial stocks led the gains. In men's cricket, India will take on host England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet to register first win under his captaincy. England, on the other hand, have named an unchanged playing 11 for the third T20 international. In football, Belgium defeated United States 4-1 in the round of 16 clash to secure their place in the quarterfinals of FIFA World Cup in Seattle. Belgium will now face Spain in the quarterfinals at the Los Angeles Stadium on Friday. Earlier, Spain stormed into the quarterfinals beating Portugal 1-0 in the round of 16 clash at the Dallas Stadium last night. Meanwhile, Portugal's superstar Cristiano Ronaldo has announced he won't be returning for the next FIFA World Cup following his nation's round of 16 exit. In another round of 16 clash of the day, defending champions Argentina will take on Egypt in Atlanta tonight. The match will kick off at 9:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह
1: तो
0: से ट्रीटमेंट,
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओवरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, पीपी, और उसमें कुछ आ गया 120 110 20 के आसपास तो HbA1c, ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है। इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेल पार्टनर में हम सिमेन काउंट, सिमेन एनालिसिस वो करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर। और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक ही चीज टेस्ट रहता है
0: जी।
1: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। हाँ।
0: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं पीसीओडी और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब पीसीओडी का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण है जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टीए जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
1: UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
0: जी,
1: सोनोग्राफी तो, एक ही माध्यम है उसको
0: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
1: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
0: जी। तो एक गाना और सुने आपके पसंद का, कौन सा?
1: अजीब दास्ता
0: है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो, और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती,
1: हाँ,
0: छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इस इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जैसे, और काउंसिलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा,
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसिलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली, जब वो अच्छे से समझाते हैं, तादा काम इधर ही हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है, प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है।
0: जी डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए? किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते हैं।
0: 35%?
1: हाँ, तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्जा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800 2000 तक कैलोरीज,
0: जी
1: और बच्चियाँ, लड़कियाँ खाती है 4000 5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है, पीसीओडी में पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाई आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शीरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है,
0: जी
1: जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं, शुगर, मैदा, वाइट जो चीजें, राइस जैसे,
0: जी
1: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं, और सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन D3 हो
0: जी
1: गया,
0: जी
1: विटामिन
0: जी
1: डी ये
0: और
1: बोलते हैं।
0: विटामिन डी
1: हाँ,
0: धूप से
1: सन,
0: ही मिलता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: और
1: सनलाइट, हाँ
0: आजकल धूप की बहुत कमी
1: बहुत
0: है,
1: कमी है।
0: लोग एयर कंडीशन
1: हाँ,
0: कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता
1: एसी,
0: नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है।
1: हाँ
0: धूप का ही एक गाना है,
1: हाँ
0: एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई
1: हाँ
0: और गाना।
1: नहीं, जरूर, बहुत अच्छा गाना है।
0: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है,
1: डाइट का
0: तो
1: बहुत सारा योगदान
0: हाँ,
1: है।
0: तो और
1: और
0: क्या-क्या डाइट्स ले सकते
1: हाँ,
0: हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे
0: जी
1: कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया।
0: चॉकलेट
1: हाँ,
0: नहीं ले
1: आर्टिफिशियल
0: सकते।
1: स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है, और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं
1: ऑयल्स,
0: खाना
1: हाँ,
0: चाहिए
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे के
1: उससे
0: शौकीन
1: ट्रांस
0: के लिए
1: फैटी,
0: मुश्किल
1: हाँ
0: है।
1: हाँ ये ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट, बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड,
0: जी
1: नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी
1: हाँ,
0: महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या
1: वो
0: करना
1: फ्रूट्स
0: चाहिए?
1: से नेचुरल शुगर मिल जाती है उनको।
0: जी
1: हाँ, तो फ्रूट्स
0: मतलब
1: इंटेक कीजिए।
0: जब अगर
1: हाँ,
0: शक्कर
1: खजूर,
0: छोड़ें तो फल जरूर
1: हाँ,
0: खाएं।
1: फल जरूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े, गुड़ खाओ। अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ,
0: जी
1: बिल्कुल गलत है।
0: हाँ
1: शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है।
0: मीठा वो
1: और
0: भी है,
1: मीठा, हाँ,
0: नुकसानदेह है।
1: हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती
0: वो
1: है,
0: खा सकते हैं।
1: खा सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ,
0: तो
1: क्रॉनिक,
0: उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है, क्या
1: हाँ,
0: निजात पाए,
1: क्रॉनिक
0: कैसे
1: स्ट्रेस
0: निजात
1: होता
0: पाए?
1: है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी की पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी की पेशेंट
0: जी
1: की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, अनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो, या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना
1: चलिए,
0: सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के।
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहिबा, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं।
1: हाँ।
0: जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं, मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ
1: अभी
0: कहिए
1: जो
0: आप।
1: है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है।
0: जल्दी आ
1: हाँ,
0: जाता है
1: जल्दी
0: पीरियड।
1: आ गया है। हम लोगों में जब 14 टू 16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने जैसी।
0: तो
1: तो
0: क्या वजह
1: क्यों,
0: है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं।
0: ओ
1: हाँ, कोक, ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन
1: हाँ,
0: जाता है तो,
1: गर्भाशय में सिस्ट
0: तो
1: बन
0: ये
1: जाता है,
0: क्या
1: तो
0: समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
1: गर्भाशय रहता गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएं रहती है, और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, थर्टी
0: जी
1: ट्वेंटी एट थर्टी। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं ही मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
0: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवाओं
1: वो
0: से ठीक
1: सिस्ट
0: होता
1: तो नेचुरल सिस्ट, तो मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है
0: जी?
1: होते हैं।
0: तो उसका कोई खतरा नहीं?
1: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
0: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: सुरमई अखियो,
0: सुरमई अखियों में
1: नन्ना
0: मुन्ना
1: मुन्ना
0: एक
1: सपना
0: सपना दे
1: सपना।
0: जा रहे, सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ चलो, तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं, और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: आईयूआई क्या है?
1: आईयूआई है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो, और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलती है, तो डोनर से बोल लेते हैं। लैब में ये सब किया जाता है,
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ, आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: वो जो परेक्टली
1: हाँ सिर बीच, हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
0: तो ट्रांसफर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। हाँ। फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि ये क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, वो उस समय कैसे, फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है। हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता?
1: एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट है
0: जी,
1: लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते
0: जी। तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी

0: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो
0: जी
1: महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
0: तो
1: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
0: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
1: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
0: क्या कुछ
1: यूटेरस में
0: खतरा होता है?
1: हाँ, यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओरीज का कैंसर हो सकता है बाद
0: जी,
1: में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
0: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे निजात?
1: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
0: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और
1: हाँ,
0: कैंसर का डर पैदा होता है, तो
1: डर
0: ऐसा
1: होता
0: कहां
1: है।
0: तक सच्चाई है इसमें?
1: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है।
0: जी
1: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका।
0: जी
1: हाँ, कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
0: मतलब पानी,
1: सिस्टिक
0: हाँ,
1: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है
0: यूरिन के रास्ते से सफेद
1: यूरिन
0: पानी
1: के।
0: आता है ऐसा?
1: हाँ, वो अलग चीज़ है। यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है।
0: जी,
1: हाँ,
0: तो उसका क्या इलाज है?
1: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है।
0: जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये रात भीगी भीगी
0: ये रात
1: नरगिस।
0: भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है,
1: हाँ।
0: सुनते हैं यही गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को, महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर,
0: हाँ
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी

0: चलेगा, लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं। हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जैसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेज़र कर देते मशीन से, हेयर लेज़र रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
1: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
0: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
1: जी, तो इसका इलाज क्या है?
0: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
1: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
0: हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है इसे थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ड तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, तो कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और
1: जी,
0: ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
1: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी?
0: मेमोग्राफी कर
1: तो
0: मेमोग्राफी सोनोग्राफी, एपएनएससी, निडल बायोप्सी भी।
1: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
0: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा। थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है,
1: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत
0: मूड
1: होता है,
0: स्विंग्स होते हैं।
1: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है, अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
0: मेंटल स्ट्रेस,
1: तो इसका
0: बस
1: ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
0: उसका डाइट से ही, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसा है। वो इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है,
1: जी
0: एक्सेप्टेंस करना है। और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो आना चाहिए।
1: जी
0: अच्छे
1: जी
0: से किताब पढ़ो, अच्छे
1: जी
0: से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे। जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है,
1: जी
0: हॉबीज है कुछ, उस पर ध्यान दो।
1: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
0: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से।
1: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं
0: पहले
1: हमारे श्रोताओं को?
0: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है, अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरी मेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब
1: जी
0: बाहर
1: जी
0: निकलने के लिए।
1: जी
0: पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है।
1: बिल्कुल
0: पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक
1: जी।
0: जीवन शैली।
1: डॉक्टर आशालता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू
1: नमस्कार।
0: सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आवारगी इस एल्बम से, कैलाश खेर की आवाज, हसन रिजवी के बोल, संगीत नरेश परेश का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में सुदर्शन फकीर की ये गजल।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आंखों में तेरा ही चेहरा इस एल्बम का गाना जय वालिया का लिखा और गाया हुआ संगीत ललित का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एल्बम का नाम है सिलसिले, जगजीत सिंह की आवाज, शब्दकार जावेद अख्तर, संगीत जगजीत सिंह का।

जोर की बरसात हुई, ये एल्बम का नाम है। जुबिन नौटियाल की आवाज, गुरप्रीत सैनी के बोल और संगीत रोचक कोहली का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल। शब्दकार जानिसार अख्तर, संगीत भूपिंदर सिंह का और एल्बम शबनम।

अबके सावन, ये एल्बम का नाम है। शुभा मुद्गल की आवाज, जयदीप साहनी के बोल, संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंग

0: तांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गाना है वारिस फिल्म से तलत महमूद और सुरैया की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत अनिल बिस्वास का। आज संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बहजाद लखनवी के।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज में जासूस फिल्म का गाना बोल हैं इंदिवर के।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अनोखा प्यार इस फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, जिया सरहदी के बोल, संगीत अनिल बिस्वास का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई. अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे. दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है.
0: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today. The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high-quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honour, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event at the Istana Merdeka. Lok Sabha Speaker Om Birla and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar have congratulated Prime Minister Modi on being conferred Indonesia's Medal of Honour. President Draupadi Murmu unveiled and flagged off the trophies of Durand Cup Tournament 2026 in New Delhi today. Addressing the gathering, the President said this year new teams will compete to become the champions of the Durand Cup, the President's Cup and the Shimla Trophy, expressing happiness over the participation of the Sri Lankan team in this year's tournament. President Murmu said the inclusion of new teams would make this historic competition even more popular. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment.

0: in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Kogde and Sameer Dave rejected all appeals against the order of the lower court and upheld its verdict confirming the sentences to members of the terror outfit Indian Mujahideen in the case. On July 26, 2008, a series of 21 bomb blasts ripped through Ahmedabad in a span of 70 minutes, killing 56 people and injuring 200 others. Some hospitals in the city were also targeted. A special court in 2022 sentenced 38 Indian Mujahideen members to death. The court had also sentenced 11 other convicts to life imprisonment. Mizoram's Natural History Museum has been notified as India's 21st designated repository under the Biological Diversity Act 2002. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the institution as a designated repository based on the recommendation of the National Biodiversity Authority. Designated repositories constitute an important component of India's biodiversity governance framework by preserving authenticated biological specimens. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. Benchmark domestic equity indices were trading in positive zone during the afternoon session today. The Sensex climbed 132 points to 78,417, while the Nifty advanced 33 points to 24,463 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: श्रोता बंधुओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:10 हुए हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला आज से भुवनेश्वर में। झारखंड समेत देश भर के 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जनजातीय अनुसंधान को मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे ईडी कार्यालय। वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्तीय लेन देन को लेकर शुरू ही पूछताछ। राज्य में एसआईआर अभियान के पहले 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे प्रपत्र। सीईओ ने सभी दलों से त्रुटि रहित मतदाता सूची से मांगा सहयोग। जेपीएससी बैकलॉग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। और कैप्टन कूल एमएस धोनी के 45वें जन्मदिन पर रांची में धोनी के घर के बाहर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ थाला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला में झारखंड समेत देश भर के प्रतिनिधि और शोधकर्ता भी हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: शराब घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। जांच एजेंसी उनसे वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्त विभाग की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल ईडी ने उनके पुत्र रोहित उरांव से भी लंबी पूछताछ की थी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

0: के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के शुरुआती 7 दिनों में 1,05,00,000 से अधिक मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से BLA2 की भागीदारी सुनिश्चित करने और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने में सहयोग की अपील की है। रांची के बेड़ो में आयोजित राजीव गांधी प्रतिभा सम्मान समारोह में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 254 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान 429 विद्यार्थियों के बीच साइकिल और आम के पौधे बांटे गए। मंत्री ने युवाओं से मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सहयोग की अपील की। रांची में स्वयंसेवी संस्था नीड्स और XISS के सहयोग से 5 दिवसीय बांस इकोसिस्टम कार्यशाला जारी है। ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार 7 जिलों की 5,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़कर क्राफ्ट सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। नीड्स के कार्यकारी निदेशक मुरारी एम चौधरी ने बांस को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया।
1: ये ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के तहत ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले लॉन्च किया गया। ये 5 दिन का एक हम लोग कॉन्क्लेव कर ले। हमारा पूरा प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम एक इकोसिस्टम स्टेट में क्रिएट करें बैम्बू का और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनकर आए। हमारा इस योजना में 5,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़ने प्रोग्राम है 7 जिलों में।
0: रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान पर 4 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयोजित इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को कराधान, व्यावसायिक कौशल और प्रबंधन सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार भाजपा नेता नीरज सिंह को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर ला रही है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस के सहयोग से हुई इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम के आज देर शाम तक आरोपी को लेकर शहर पहुंचने की संभावना है। इस बीच भाजपा नेता नीरज सिंह के गिरफ्तारी पर विधायक सरयू राय ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जाँच करने का आग्रह किया है।
2: जो भी आरोपी है अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है तो इसके बारे में हम ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि इनको गिरफ्तार किया इनको नहीं गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया तो इनके ऊपर आरोप क्या, आपका जो FIR है उसमें कोई आरोप स्पष्ट नहीं है। उनके ऊपर आरोप है जिसके कारण से उनको नामजद किया गया है, धाराएं लगाई गई।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आज सुबह के कारोबारी क्षेत्र में घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में लगभग 0.4% की तेजी देखी गई, जिससे सेंसेक्स 307 अंक चढ़कर 78,592 पर और निफ्टी 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी संताल परगना के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
3: संथाल में जो पूरा संथाल का इलाका मतलब साहिबगंज पाकुड़ गोड्डा दुमका देवघर जामताड़ा धनबाद गिरिडीह यहाँ तक में आपको भारी बारिश कुछ जगहों पे देखने को मिल सकती है। तभी सिस्टम के प्रभाव में अगले दो दिन तक लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 8 तारीख से हल्की से बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, भारी बारिश की आशंका थोड़ी सी कम है।
0: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर सुबह से ही उनके रांची स्थित सिमलिया आवास के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ है। देश विदेश से फैंस सोशल मीडिया के जरिए भी धोनी को बधाइयां दे रहे हैं। रांची जिला क्रिकेट संघ में वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद सचिव शैलेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष सौमित्र पटनायक के अधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में शंभू शरण सिन्हा को कार्यवाहक सचिव बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला आज से भुवनेश्वर में, झारखंड समेत देश भर के 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जनजातीय अनुसंधान को मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे ईडी कार्यालय। वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्तीय लेन देन को लेकर शुरू हुई पूछताछ। राज्य में एसआईआर अभियान के पहले 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे प्रपत्र। सीईओ ने सभी दलों से त्रुटि रहित मतदाता सूची में मांगा सहयोग। जेपीएससी बैकलॉग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। और कैप्टन कूल एमएस धोनी के 45वें जन्मदिन पर रांची में धोनी के घर के बाहर उमड़े समर्थकों की भारी भीड़। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ थाला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मजा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र, यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुगल-ए-आज़म। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमती का सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का जमीन पर, ये कालजई रोमांटिक गीत है, संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज़ मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमती फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमती फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनके एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगले आजम फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी। फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आंखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देख कर ही महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज़, संवाद आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ। ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आंखों से अभिनय किया करते थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहां सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहां देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं। आवाज मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का ये किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत, जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पांचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सबके चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूंगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी, जो इसमें जो कलाकार हैं वो वहीदा रहमान हैं, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं, लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूं। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आंखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आजाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

आज़ाद फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर के साथ, जो आवाज़ है वो चितलकर यानी कि सी रामचंद्र की है और अभिनेत्री हैं मीना कुमारी। एक साथी लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने पर्दे पर आम इंसान के संघर्ष और स्वाभिमान को जीवंत किया। उनका बुलंद व्यक्तित्व और चुंबकीय अभिनय दर्शकों को सम्मोहन में बांध लेता था। उन्होंने एंग्री यंग मैन बनकर समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया तो अपनी भावुक भूमिकाओं से हर आंख नम भी की। संवाद अदायगी के वो बेताज बादशाह जिनकी मखमली आवाज आज भी दिलों को छूती है। चलिए अगला गाना दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का ये गाना है और मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वहीदा रहमान।

सचमुच गीत में सागर की गहराइयां नजर भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: heavy to exceptionally heavy spells across South Gujarat and parts of Saurashtra, advising fishermen to avoid venturing into the Arabian Sea until 9th of July. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
1: In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet to register a win under his captaincy. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honour, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
3: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
3: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा।

0: कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रकृति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति AY कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार ते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता एक

0: और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूह का सामूहिक विकास, ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो

0: रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। सदाबहार।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

लीजिए अब सुनिए नवरंग फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मतदाता इनुमरेशन फॉर्म और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कर उन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म में वर्तमान की सही जानकारी दर्ज करें तथा पुराने रिकॉर्ड की मैपिंग पूर्व SIR सूची के अनुसार ही करें। साथ ही सभी जिलों को 14 जुलाई को BLO और BLA2 की बैठक के साथ चुनाव पाठशाला आयोजित कर पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी उनके पुत्र से भी पूछताछ कर चुकी है और दोनों के बयानों का दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने रामेश्वर उरांव के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब मामले के विभिन्न पहलुओं से जांच जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया का होमवर्क चालू कर दिया गया है।
2: मेडिकल कॉलेज दे दिया, क्या दिक्कत है यहाँ पर? हम बोला 3 से 4 महीने में हम चालू ही कर देंगे। फैकल्टी अभी से हमारा चालू हो गया होगा। बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, फैकल्टी लाना पड़ता है, चलाने वाले के प्रोसेस होता है। अभी से हम प्रिंसिपल खोज रहे हैं, डायरेक्टर खोज रहे हैं, डॉक्टर्स खोज रहे हैं, मैन पावर हम बहाली करने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि 3 से 4 महीने में या जनवरी तक हम बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम करा देंगे।
0: देवघर जिले का प्रसिद्ध आम्रपाली आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। देवघर से विशेष पैकेजिंग के साथ भेजे गए 1000 किलो आम्रपाली आम की पहली खेप दुबई पहुंच गई है। यह आम अब दुबई के प्रसिद्ध लुलू रिटेल स्टोर के काउंटरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। उपायुक्त देवघर सौरभ कुमार घुमानिया ने बताया कि इस पहल से देवघर के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और जिले की अलग पहचान बनेगी। देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन तीनों परियोजनाओं की प्रगति की 15 दिनों के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। मॉनसून, राज्य में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी संथाल परगना के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है, अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल,
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल सहित पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि

0: भाई हमारे हमारी संतान चली गई, तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना है, जाना है, अलग अलग जगहों से पता चला है।
0: लाइक
1: बिल्कुल,
0: कमेंट,
1: कमेंट,
0: आपने
1: लाइक,
0: रील डाली और हमने लाइक किया, अरे
1: और
0: तुमने
1: सब
0: मेरे लाइक नहीं किया।
1: जी, इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं, और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
0: वक्त कितना चला जाता है
1: जी
0: दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन
1: जी
0: जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक
1: जी
0: कमेंट। तो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और
1: जी
0: जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे,
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं, कि
1: बिल्कुल,
0: अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
1: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा, आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है, तो
0: मैं तो
1: बिल्कुल
0: डर
1: जरूर
0: गई दीपा
1: बताइए।
0: जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी, भैया यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं, और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं, हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
0: देख
1: बताएं।
0: तो रहे हैं हम भी,
1: जी
0: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ
1: आ
0: चुके
1: चुके
0: हैं
1: हैं।
0: और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसकी फेर में नहीं पड़ते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं।
1: पहुंचाते हैं
0: तो
1: जी।
0: अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 100 दिन चले 250 कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं ना,
1: जी बिल्कुल,
0: याद है
1: जैसे
0: आपको?
1: कि याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
0: टेढ़ी खीर।
1: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे,
0: कहा
1: और
0: जाता
1: वो
0: है
1: जी
0: कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो होगा ही।
1: हो कहीं नहीं।
0: ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां
1: हाँ,
0: हैं जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ
1: इसी
0: को
1: तरह से
0: मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो बस सीधे लिखो, पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो,
1: जी
0: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
1: वैसे
0: थे।
1: ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते
0: तो
1: थे।
0: कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज
1: चलिए
0: परीक्षा
1: आज
0: होती
1: जानते हैं।
0: है।
1: बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे, जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं, कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए, और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो
0: बैठ
1: जाता है और मुंह
0: जाता
1: बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज, आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की, किनारा कैपिटल नाम से।
0: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं,
1: चलिए
0: फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे, तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ लोग कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और अब जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी।
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है, तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं।
1: जी, ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है।
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की है हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी, और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहां उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर

0: याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
1: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
0: जी, और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
1: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
0: जी।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
3: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में जरूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं।

0: हैं
1: जी
0: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बहार आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। हुआ यूं कि गाँव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे, वहाँ तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहाँ कहाँ पहुंचा देते हैं।
1: बिल्कुल, और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
1: चलिए

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब

0: प्रसिद्धि है,
1: प्रसिद्धि
0: और
1: है जी।
0: कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता, या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है कई
0: यहाँ
1: बार।
0: तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल
1: जी
0: मीडिया पर,
1: जी
0: आप
1: जी
0: ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे
1: दिखाई
0: जाती
1: पड़ती
0: है,
1: है जी, तो मालूम पड़ जाता
0: और
1: है।
0: रात को उठ के 2-2.5 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और
1: जी
0: किसने दिल का साइन लगाया। वो
1: हाँ,
0: भी अब
1: ये
0: एक
1: भी
0: अलग पैमाना बन गया है कि अरे
1: जी।
0: उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए,
1: जी
0: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं, सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर
1: बिल्कुल
0: देते हैं।
1: बिल्कुल
0: इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: कई बार सड़कों पे आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए हुए है, और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
0: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
1: चलिए
0: फिर उसके बाद चर्चा
1: जी।
0: करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे। दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चल रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक
1: पहुंचाए हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है। देखिए, इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई, यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
1: जी।
0: वहाँ लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
1: जी,
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं, असहमति थी
1: जी।
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल देते हैं।
1: और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
1: हाँ, ये बात
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ

0: सकारात्मक पहलू भी है। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो
1: जी
0: किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थे जानने के लिए,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है, तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से
1: जी
0: जान
1: जान
0: लेते
1: लेते
0: हैं
1: हैं
0: कि हाँ, ये
1: जी,
0: किताब चर्चित है, तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें, और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे, कि ये कहते हैं वायरल होने का जुनून, जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है, उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में। उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते, तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका ये कहना है।
0: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम हैं, तो जो फायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और
1: बिल्कुल
0: क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है, और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को, हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं।
1: जी
0: अभी जो हमारे घरों में दादी, नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करती हैं,
1: जी
0: और कुछ लोग
1: और
0: अपना
1: कई लोग
0: डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं जैसे
0: डांस
1: आप
0: का
1: बता,
0: वीडियो ये दिखाते हैं कि हमें देखो, हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम हैं, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी ही बता रहा है,
1: जी
0: और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे विषयों
0: मतलब
1: पर वो
0: मुझे तो
1: लोग
0: लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
1: सोशल
0: पर।
1: मीडिया पर नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का
0: और
1: इस्तेमाल
0: इसमें
1: करना।
0: नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती है।
1: जी
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी, बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को, और सुनवाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना?
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव जरूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीजें जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहां भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहां पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को यह एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहां पर मोलभाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वालों से अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी, तो वो जरूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो, 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोलभाव क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोलभाव नहीं करना चाहिए।
1: लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है,
0: बिल्कुल
1: ये भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी

0: कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, दो तीन दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है। ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
1: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोचकर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात लिखी है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
0: जी, एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें
1: सुनते हैं
0: जी।

0: अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल
1: भाव पे
0: भाव
1: लगे
0: किए
1: हुए
0: जा
1: हैं
0: रहे।
1: बिल्कुल।
0: अब एक श्रोता
1: और
0: ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा लें तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना,
1: हाँ
0: अच्छा
1: ये बात
0: करी
1: तो है,
0: पत्ता
1: करी
0: भी
1: पत्ता बस
0: डाल दो।
1: डाल दो।
0: वो फ्री में लेने में क्या मिलता है, ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मोल
1: बिल्कुल
0: भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप
1: पर
0: जरा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं
1: बिल्कुल आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पक रही
0: कैसे?
1: है। देखिए जहां पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहां जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे
1: श्रोताओं ने
0: की
1: लिख भेजा
0: एक
1: है कि
0: टांग, ये भी एक
1: हाँ
0: मुहावरा है।
1: ये भी एक
0: अब
1: पॉइंट।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल ये भी होती है, जहां अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और
1: जी
0: अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूं, तुम किसी से न कहना, मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी, तो बात तो थी छोटी सी लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं जब जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की
1: जी
0: इस तरह के मुहावरे, तो वहां पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है,
1: जी
0: तो अर्थ बदल जाता
1: अर्थ
0: है।
1: बदल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं, वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है, इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए, यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, फिर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे, मूल भाव के लिए इन्होंने लिखा है,
1: जी
0: और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो दो, फिर मुड़ के देखते दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ।

0: पर अब नहीं करते सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था, बहुत सारा तरह
1: जी
0: तरह के
1: जी जी
0: डिजाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रही पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियां और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियां औरतें, फिर वापस लौट के आ रही, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे
1: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहां पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए, तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है, हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना। तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं, देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना, तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है
0: तो 100 रुपए में मिल
1: जो
0: जाएगा।
1: 100 रुपए में मिल
0: आज तो हम
1: जाएगा
0: सबकी हम आप भी खिचड़ी पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं
1: कभी
0: खिचड़ी पका
1: खिचड़ी
0: रहे
1: पक
0: हैं।
1: रही
0: अब कहीं हमारे एक श्रोता ने लिखा है, कारे कारे बादरा सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है,
1: जी
0: लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा। तो सुन
1: जी
0: लेते हैं ये
1: चलिए सुनते
0: गाना।
1: हैं।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनियाँ आएं और इतनी संतुलित बारिश लेकर आएं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कर उन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म में वर्तमान की सही जानकारी दर्ज करें और पुराने रिकॉर्ड्स की मैपिंग पूर्व SIR सूची के अनुसार ही करें। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। रांची के सिमलिया स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक जुटे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: धन्यवाद पूनम जी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के
2: रहने वाले हैं। पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
3: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
2: अच्छा।
3: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
2: अच्छा।
3: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
2: जी।
3: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं
2: जी जी।
3: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
2: अच्छा।
3: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
2: जी।
3: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
2: अच्छा।
3: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं NSD में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या FTI में जाऊं
2: जी,
3: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे ये करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो
2: जी।
3: ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो, बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने MBA किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
2: अच्छा।
3: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
2: जी।
3: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
2: अच्छा।
3: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
2: जी।
3: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी। तो मुझे एक महीने बाद वापस

0: जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माई MBA,
1: अच्छा
0: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ। मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली। सो आई टुक अ स्विच, मैं यहाँ पे हाइपर सिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा
0: सो 2 2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने
1: मतलब
0: ऑडिशन
1: पहली
0: दिया
1: बार आए तो एक नौकरी के लिए आए।
0: नौकरी के लिए।
1: अच्छा
0: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी।
1: जी।
0: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था 2 साल ऑलमोस्ट, वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया, जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला।
1: जी, ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है उसकी अब यहां शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
0: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या
1: जी
0: स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
1: हाँ
0: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था,
1: जी
0: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहां पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहां पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है, एक
1: हाँ
0: पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
1: हाँ
0: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे
1: एक
0: थे।
1: उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं,
0: जी
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
0: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूं, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
1: क्या
0: था,
1: बात है, क्या बात
0: तो आई नेवर इमेजिन एनी अदर
1: है, वाह वाह वाह
0: प्रोफेशन।
1: वाह।
0: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक हम करते रहते थे। 5th स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था, जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
1: जी
0: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
1: जी
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है।
0: बहुत ज्यादा
1: ये
0: मैं
1: कितने तने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा MBA जब मेरा पास आउट हो गया,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो। तो
1: अच्छा
0: मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
1: हाँ
0: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7 8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था कि
1: जी
0: यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना पड़ रहा है।
1: ओह
0: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
1: हाँ
0: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ
0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: ये
1: गाना।
0: एक बहुत खूबसूरत सा गाना है।
1: आइए सुनते हैं।
2: जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल के
0: हाँ
1: लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के, मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी और रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस, तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं।
0: हाँ
1: सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था।
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं
0: अच्छा
1: थोड़ा फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं,
0: सहज और स्वाभाविक
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसे
1: अभिनय
0: कहा
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं।
0: जी जी

0: तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
1: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
0: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
1: जी।
0: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
1: जी
0: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है। लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
1: हाँ
0: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है इसलिए वो साथ में काम करता है।
1: जी
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
1: जी
0: वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूं, मैं मराठी कर सकता हूं,
1: जी
0: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
1: जी
0: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊं, बट
1: हाँ
0: हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूं रेगुलर, सो
1: अच्छा।
0: दैट इज थिंग।
1: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ,
1: जी
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
1: ओहो,
0: गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे,
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो उस टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी
1: जी
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी।
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो भी वाकया जो है कि पहली
1: जी,
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चा साहब के जबानी मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय, वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी,
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ,
1: डिपेंड है।
0: यस,
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफी दिन। फिर हमें नहीं बोलना पड़ा, बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा। और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है,

0: उसी से आपका घर चलने वाला है।
1: लेकिन मना करना,
0: लेकिन मना करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं वेरिएशन ना दे पाऊं तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए
1: जी।
0: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ।
1: अच्छा।
0: वर ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है
1: जी, अनाज का
0: कोठार। अनाज का कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20-25 फीट के कोठार होते हैं जो पहले किले पे भी हुआ करते थे।
1: हाँ।
0: जहां पे लोग आके उसमें धान्य डालते थे, कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर ग्रेनरी है तो उसमें आप डालोगे, एक बार दो बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा
1: जी।
0: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे अनाज, तो वो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी
1: जी,
0: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी। उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा।
1: अच्छा।
0: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था
1: जी, जी।
0: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता
1: है। बिल्कुल।
0: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे।
1: हाँ, हाँ। बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था
0: जी,
1: इसमें सारे बड़े नाम
0: बहुत,
1: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
0: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता।
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
0: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है।
1: हाँ,
0: अगर
1: हाँ।
0: आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है
1: जी,
0: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया। तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं
1: जी जी।
0: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था।
1: हाँ, हाँ।
0: हमारा शो और उनका शो KBC और वो
1: जी, जी।
0: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात करने का। तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा
1: जी।
0: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है।
1: अच्छा।
0: जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, बोले एक मिनट बात करनी है।
1: हाँ।
0: तो वो आए, पटेल साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए। उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में। अरे क्या हो गया?
1: अच्छा।
0: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं।
1: हाँ।
0: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। He laughed the same way, the way you laughed.
1: अच्छा अच्छा।
0: डर वाला मुझसे होता नहीं है।
1: यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
0: हाँ। बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टूगेदर्स में, शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे। I love that song. It starts with हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा।
1: चलिए सुनते हैं
0: हम।

0: तरसे दे दे प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार दे दे हमें प्यार दे।
1: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार, और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है। मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
2: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी।
1: हाँ हाँ,
2: वो मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी हैं
1: जी,
2: तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एक ही वर्ष एक ही मेरी दूसरी फिल्म थी
1: जी।
2: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख साहब थे, वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मड़गांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी
1: जी।
2: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ, कितनी भी बार देखो, वैसा ही मड़गांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक। वो एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब सीरीज जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में
1: जी,
2: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जड़ी चक्रवर्ती साहब
1: जी,
2: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने सत्या का कैरेक्टर
1: किया।
2: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब
1: जी,
2: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था, जो कि ग्रे शेड था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधीगोड़ से एक युद्ध, जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
1: अच्छा।
2: रंजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े, वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी होंगी आज इंडिया
1: जी,
2: में
1: जी।
2: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखों की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में थी, लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था
1: जी।
2: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू।
1: अच्छा।
2: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी, मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई।
1: अच्छा।
2: बातें हुई, मुझे पता नहीं वो कहां जा रहे हैं, उन्होंने कहा जुहू चलो।
1: अच्छा।
2: बच्चन

0: साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ, मिलते हैं बाद में। बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा, तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर? अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा।
0: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प, इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई उनके साथ ऊपर गया। ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे।
1: अच्छा।
0: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा।
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
1: अच्छा।
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे। और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया कि ये डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था
1: जी।
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे, रंजीत सर ने बताया ये मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं, काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है। Then he gave me that character and I worked with him. It was a beautiful experience working with him also.
1: OTT की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है
0: जी।
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और OTT ऑलमोस्ट सेम है।
1: हाँ,
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है
1: जी।
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है आगे, और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
0: डेडलाइन
1: तो टेलीकास्ट होना ही है।
0: होना ही है
1: जी।
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है, और आपके पास में बहुत सारा काम होता है
1: जी जी।
0: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी
1: जी।
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी।
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का, तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात।
0: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौशी, भारती आचरेकर
1: जी,
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है,
1: बिल्कुल।
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था।
1: अच्छा।
0: तब तक मैं फिल्म्स और OTT ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा है अपने आप में मुझे,
1: ये मुझे लगता है 2022 की बात है।
0: जी जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ।
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी, उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है।
1: हाँ।
0: वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा।
1: अच्छा।
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने वाले, तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो
1: जी।
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल।
0: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा है वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता था।
1: दर दर भटकने वाली बात है।
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, नहीं सर पता करने आया, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं कोई कोई काम नहीं है। तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था।
1: हाँ,
0: वो सफर है।
1: अच्छा।

0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ,
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब फिर?
1: बराबर।
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ।
1: हाँ,
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा, बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात है। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया हुआ गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: है, क्या बात है,
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता।
1: हम दोनों फिल्म का गाना है।
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत,
0: बेहद लोकप्रिय।
1: आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे।
1: जी।
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी।
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी,
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमिता ये करते हैं, सुमिता ये करेंगे, हाँ ये करेंगे।
0: हाँ।
1: जैसे एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था।
0: जी जी जी।
1: क्योंकि
0: मैंने बड़े भाई का रोल,
1: मैंने उनके बड़े भाई का रोल किया था,
0: मनोज वागले
1: मेरा नाम था।
0: जी जी जी।
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था।
0: हाँ।
1: मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए।
0: हाँ।
1: कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ। सभी हम लोग सभी से सीनियर है। और फिर उसके बाद में जैसे एक्शन हो गया तो सुमित दादा

0: यहाँ से आवाज आती थी, अरे दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बहुत
1: जी
0: बचपन से काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: फास्टर फेने वो
1: हाँ
0: शो किया करते थे 80s में शायद,
1: बिल्कुल,
0: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और
1: हाँ
0: उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
1: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा जानजन जी के साथ जो दिया था आपने।
0: अमेजिंग इट वॉज, मतलब
1: हाँ
0: पहला शॉट सुमित्रा के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमित्रा के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
1: अच्छा,
0: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
1: हाँ
0: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
1: अच्छा,
0: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है,
1: अच्छा,
0: और ये जो कैरेक्टर है मनोज बागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है
1: ओके,
0: मेरा, जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले, जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
1: हाँ,
0: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है, जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं इंसान, अगर दिल से अच्छा नहीं है तो
1: बहुत
0: कुछ
1: बड़े
0: नहीं।
1: कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं
0: जी,
1: और बहुत विनम्र होते हैं।
0: बहुत विनम्र होते हैं, इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो कि इस पे चला रहे हैं कुछ
1: जी
0: नहीं।
1: जी जी
0: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित्रा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता,
1: जी
0: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से, और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
1: जी
0: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
1: अच्छा,
0: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर के थ्रू आया कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही लेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें, तो हो
1: जी
0: जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम, अगर मेरा और उनका सीन है, वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे
1: अच्छा,
0: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
1: जी
0: वो ज्यादा मैटर करती है,
1: बिल्कुल,
0: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है, या मराठी में आवंडा गेड़ा समझो अपन,
1: हाँ, एक घूंट लेने की जो एक
0: घूंट
1: प्रक्रिया
0: वो
1: है।
0: है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा, ऐसा
1: प्रयास करना पड़ता
0: प्रयास
1: है।
0: करना पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए, लेवल
1: हाँ
0: तो पहुंचने की बात ही नहीं करता, सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली,
1: जी
0: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर
1: हाँ
0: मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है,
1: हाँ
0: इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ,
1: जी
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा।
1: हाँ
0: तो आई यूज टू हैव इट फॉर एन आवर टू आवर, मैं लिखता था खुद, मैं लिखता हूं जितने भी लाइंस आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज टू राइट इन माई वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना
1: जी
0: पाटेकर
1: जी
0: साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार,
1: जी जी
0: उसी से फायदा होता है। आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है,
1: जी
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है।
1: जी
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक, दीपक पारिक, और उनके साथ भी करना बड़ा मजा आता था। एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया।
1: जी जी,
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ।
1: हाँ।
0: कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया।

0: बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा।
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा।
1: अच्छा।
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है।
1: अच्छा।
0: दिखता बिल्कुल आपकी तरह। मैंने अच्छा
1: अच्छा
0: वाला किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है, वागले की दुनिया।
1: हाँ।
0: उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है।
1: जी जी।
0: मैंने बोला, सर काम अच्छा करता है क्या?
1: हाँ।
0: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
1: अच्छा।
0: वाला चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में, उनको बताया कि ये वही है। उन्होंने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या करोगे आप?
1: ये बिल्कुल रॉबिन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं।
0: ट्रू ट्रू।
1: जी जी जी। तो ऐसा ही वाकया आपके साथ?
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
1: हाँ।
0: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात है।
1: और क्या चाहिए?
0: और क्या चाहिए?
1: क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा मेरे, जितने भी रिश्तेदार है उनको भी अच्छा लगा।
1: हाँ।
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा। और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार।
1: क्या बात।
0: मैंने एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए।
1: हाँ।
0: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी, रामजी लंदन वाले।
1: अच्छा। हाँ।
0: बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा।
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं।
1: अच्छा।
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं। उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पे सब दिया जाता है।
1: हाँ।
0: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे आप मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं, अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है।
1: हाँ।
0: गाड़ी रहेंगी आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं।
1: हाँ।
0: मैं अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ। तो मजा तो वही है।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे।
1: क्या बात है।
0: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा।
1: हो। आइए सुनते हैं।

अभिनेता विपुल देशपांडे से, जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
2: वाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया

शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। रांची से कुड़ू भेजी जा रही अवैध शराब और शराब बनाने वाली अन्य सामग्री के साथ दो टेम्पो चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद लोहरदगा जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ श्रद्धा क्रिकेटा का नेतृत्व में गठित पुलिस की छापामारी टीम ने यह कार्रवाई की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। और देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिले और कब मिले उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें उनसे।

हवाओं में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद फखरुल हसन बना रहूंगा इस सभा में आपके साथ रात्रि 11:10 तक। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृषकों एवं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी शाम 6:02 से। चर्चा होगी पशुओं का टीकाकरण समय पर जरूरी, साथ ही चर्चा में सुनिएगा टपक सिंचाई के अनेकों लाभ। भेंट वार्ता आप सुनेंगे एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र से दी जाने वाली सुविधाएं पर। वार्ताकार हैं सोनी पांडे। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 6:30 से। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर। आज की बात में लतर वर्गीय सब्जियों की कीट एवं नियंत्रण। भेंटवार्ता आप सुनेंगे ओल की वैज्ञानिक खेती पर। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, कृषि विशेषज्ञ क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी पलामू से। भेंटकर्ता हैं संतोष कुमार। आज की नसीहत में पशुओं के संक्रमण रोग एवं निदान, आज का मौसम और जानेंगे आज के बाजार का भाव इसी कार्यक्रम के अंतर्गत।

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का आनंद आप लेंगे। शाम 7:45 पर कार्यक्रम होगा खुला आकाश। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मनीष कुमार मिश्रा से उनकी स्वरचित कविताएं। शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। 8:30 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देशगान। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

आज की शाम युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद फखरुल हसन का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और हमेशा आपके लिए हम यही कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और कामयाब रहें। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सफल होने के लिए जिज्ञासु बनिए, और इसी कार्यक्रम में मुकेश कुमार शर्मा की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, और कुछ मनोरंजन भी हम आपका करवाएंगे फिल्मी गीतों के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दोस्तों चर्चा से। दोस्तों, क्या आप महान वैज्ञानिक एडिसन के बचपन की कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं? जब वे छोटे थे तो उन्होंने देखा कि जब मुर्गी अंडे पर बैठ जाती है तब उसके बच्चे का जन्म होता है। ऐसा विचार करके वे भी एक अंडे पर बैठ गए जिससे कि एक बच्चे का जन्म हो सके, पर अंडा टूट गया एवं कपड़े ख़राब हो जाने की वजह से उनको डांट पड़ी। एक बार उन्होंने सोचा कि जब पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। तब उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि पक्षी एक इंसान में ऐसा होना कौन सा अंतर है पक्षी और इंसान में जिससे ये विविधता है। अंततः नन्हे एडिसन को लगा कि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं इसलिए वे उड़ सकते हैं। अपने विचारों की सत्यता ज्ञात करने के लिए एडिसन ने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़े एवं उन्हें पीसकर उनका चूर्ण बनाकर पानी में घोला और नौकरानी की लड़की को पिला दिया। परिणामस्वरूप वो बीमार पड़ गई। एडिसन के जीवन से जुड़ी ये घटनाएं चाहे कैसी भी हों, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है दोस्तों कि उनके अंदर तीव्र जिज्ञासा थी। उनकी इसी जिज्ञासा ने, तीव्र लालसा ने उन्हें विश्व का एक महान वैज्ञानिक बना दिया। याद रखिए दोस्तों, यदि आप में प्रतिपल कुछ नया सीखने की जिज्ञासा है तो आपके ज्ञान का भंडार बढ़ता ही जाता है। जिसके पास ज्ञान है उसमें आत्मविश्वास भी है। यदि आत्मविश्वास है तो साहस भी है, क्योंकि आत्मविश्वास ही साहस का जनक है। किसी भी लक्ष्य को पाने का आत्मविश्वास यदि आप में है तभी तो आप उसकी ओर बढ़ने का साहस कर पाएंगे। दोस्तों, आपके सामने प्रतिदिन कुछ घटनाएं होती हैं। कुछ लोग उन घटनाओं को देखकर कहते हैं कि ऐसा घटित हो गया, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। वहीं कोई तीसरा व्यक्ति उसी घटना को लेकर अपना विचार अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। घटना एक ही है, विचार अलग अलग हैं। किसी भी घटना को देखकर आप कैसे विचार व्यक्त करेंगे यह आपके दृष्टिकोण पर आधारित है। दोस्तों, वो व्यक्ति जिसने केवल इतना कहा कि ऐसा घटित हो गया वो संवेदनशीलता से परे है, जबकि जिन्होंने कुछ विचार व्यक्त किए वे संवेदनशील व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। और जिसने घटना को लेकर बिल्कुल ठीक विचार प्रस्तुत किए वो समझदार संवेदनशील व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, और वही सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। आपको जानना चाहिए कि जहां आप रहते हैं, जिस तरह के परिवेश में आप प्रगति कर रहे हैं, वहां आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। निसंदेह उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी भी होंगी जिनसे आप कुछ सीख भी पाएंगे। दोस्तों, जिज्ञासा और संवेदनशीलता में अत्यंत गहरा संबंध है। यदि आप में जिज्ञासा है तभी आप संवेदनशील

हैं और यदि ये दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं तभी आप लगातार कुछ सीखते जाते हैं। दोस्तों, एक बार रात्रि के 12 बजे तीन लोग टहलने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक दुकान के अंदर कुछ रोशनी हो रही है। एक ने कहा, दुकान में अंदर प्रकाश है। दूसरे ने कहा, दुकानदार बेवकूफ़ है जो लाइट जलती हुई छोड़कर चला गया है। तीसरे ने कहा, चलो देखते हैं कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। तीनों लोग दुकान के पास गए। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि दुकान का दरवाज़ा तो खुला हुआ है और वास्तव में कुछ लोग चोरी कर रहे हैं। तभी तीनों ने उस दुकान को लूटने से बचाया। दोस्तों, ये तो अलग अलग दृष्टिकोण का सिर्फ एक उदाहरण है। विश्वास कीजिए, आपके जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। ऐसी कई बातें सामने आती हैं जिनका सामना करने पर यदि आप जिज्ञासु हैं तो बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। न्यूटन से पहले भी कई लोग ने फल को पेड़ से गिरते देखा था। जेम्स वाट से पहले भी लोगों ने भाप के प्रभाव से केतली के ढक्कन को उठते गिरते देखा था। एडिसन से पहले भी लोगों ने पक्षियों को उड़ते देखा था, मगर उन लोगों ने कोई नियम सिद्धांत नहीं दिया, कोई इंजन, कोई जहाज़ नहीं बनाया। जबकि ये लोग तो महानता के स्तर तक पहुँचे। सफलता की नींव इन्हीं छोटी छोटी बातों से मिलकर बनती है। दोस्तों, यदि आप जिज्ञासु हैं, संवेदनशील हैं, तो किसी भी तथ्य की सच्चाई तक आप भी दूसरों से पहले पहुँच कर स्वयं को कामयाब बना सकते हैं। दोस्तों, हम सभी अक्सर गलतियां करते हैं, मगर हम में से कितने लोग इन गलतियों से कोई सबक लेते हैं। भूल करना तो मानव का स्वभाव है, लेकिन जब आप में से कोई भी अपनी भूल का सुधार करके आगे बढ़ता है तो उसकी वही भूल भविष्य में आपकी सफलता का कारण बन जाती है। इसके लिए आप में संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। जिज्ञासा एक बड़ी वस्तु है। दोस्तों, यदि आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप बड़े से बड़े कार्यों को सीख जाते हैं। पर यदि आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है तब यह कैसे संभव है और क्यों संभव है? आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, एक बार असफल होते हैं, यदि आपके अंदर जिज्ञासा है कि उस कार्य में आप क्यों असफल हुए, यदि आप में ये जानने की अभिलाषा है कि उस कार्य की बारीकियां क्या हैं, तभी तो आप उसे पुनः प्रारंभ करने का साहस करेंगे, अन्यथा आप उसे वहीं छोड़ देंगे। यही कारण है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग जुझारू होते हैं। वे आसानी से हार नहीं मानते और अंततः लक्ष्य हासिल करके रहते हैं। अपने कार्य के प्रति निष्ठा की भावना भी जिज्ञासा से ही जन्म लेती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को पूरा मन लगाकर करता है एवं परिणामतः उसे पूर्ण करके ही छोड़ता है। दोस्तों, हमें अपने बड़ों के अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए। इंसान का जीवन प्रमुखता तीन अवस्थाओं से विभाजित होता है, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। जवानी इन तीनों ही अवस्थाओं में सर्वाधिक गौरवपूर्ण अवस्था होती है। इंसान में सबसे अधिक जोश एवं ऊर्जा इसी अवस्था में होती है। इस समय वो कुछ भी कर सकता है। शक्ति का निरंतर प्रवाह उसे किसी भी ऊंचाई पर खड़ा कर सकता है। लेकिन अक्सर कुछ लोग अपनी सोच के आगे बड़े एवं अधिक अनुभव वाले लोगों के विचारों को गंभीरता से नहीं लेते। ये सफलता की राह में आने वाली एक बड़ी बाधा है। दोस्तों, जिस तरह स्वच्छंद बहता हुआ जल बाढ़ कहलाता है और बाढ़ गांव के गांव तबाह कर देती है, बस्तियां उजाड़ देती हैं, जब इसी जल को हम सही दिशा में प्रवाह देते हैं तो ये हमें अगणित सुविधाएं प्रदान करता है। सीधी सी बात है दोस्तों, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप शक्तिशाली हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप अपनी शक्तियों को किस दिशा में लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बड़े लोगों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं उसी क्षेत्र में आपसे पहले सफल हो चुके लोगों के पास कहीं अधिक अनुभव है जो आपको सफलता की नई ऊंचाइयां दिलाने की राह आसान बना सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो कामयाबी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, आप भी समय

बने और जो है अपनी कोशिश को हमेशा बरकरार रखें और आगे बढ़ते जाएं, सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अपनी हिम्मत को हमेशा बुलंद रखें, अपने हौसलों को हमेशा जो है बुलंद रखें, एक ना एक दिन आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अब आइए मुकेश कुमार शर्मा की वार्ता सुनते हैं। विषय है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम।
1: प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम उद्देश्य लाभ एवं पात्रता। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सन 2018 में लागू किया गया था। इस योजना का शुरुआती रूप पहले मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से वर्ष 2008 में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जमीनी जरूरतों के अनुरूप बनाते हुए वर्ष 2018 में इसका पुनर्गठन किया और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करना और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार का लक्ष्य होता है बुनियादी ढांचे का विकास करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, पेयजल, सड़क एवं स्वच्छता की व्यवस्था करना तथा लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। प्रिय श्रोताओं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, ITI, कौशल विकास केंद्र, आंगनबाड़ी भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, सड़कें और पेयजल परियोजनाएं विकसित की जाती है। इन सभी कार्यों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। प्रिय श्रोताओं, सरकार का मानना है कि जब तक समाज का हर वर्ग आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जैसे योजना को लागू किया गया है, ताकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को मजबूत किया जा सके। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करें, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम को इस सोच के साथ तैयार किया गया है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुँचे और कोई भी क्षेत्र या समुदाय विकास की मुख्य धारा से पीछे न रह जाए। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सड़क और कौशल विकास जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाता है, ताकि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों का विस्तार करना है, जिससे बच्चों और युवाओं को स्कूल, कॉलेज, छात्रावास जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इससे युवा आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त हो। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाओं और मातृ शिशु देखभाल योजना को सुदृढ़ करना है, ताकि लोगों को सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। साथ ही साथ क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में समान विकास को बढ़ावा देना है। अब अगर इस योजना के लाभ की बात करें, तो इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाती है और उन क्षेत्रों पर ध्यान देती है जहां बुनियादी सुविधाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसके तहत भवन, कॉलेज, छात्रावास, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी भवन, सड़कें और पेयजल परियोजनाएँ बनाई जाती है। इन सुविधाओं से आम लोगों का जीवन आसान होता है तथा क्षेत्र का भी समग्र विकास होता है। प्रिय श्रोताओं, इस योजना का महत्वपूर्ण लाभ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार भी है। इस योजना से बच्चों और युवाओं को बेहतर स्कूल तथा प्रशिक्षण केंद्र भी मिलते हैं, जिससे वे शिक्षा से जुड़ पाते हैं और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त करते हैं। खासकर गरीब और पिछड़े परिवार के बच्चों को इससे बहुत ही लाभ मिलता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को

0: मजबूत किया जाता है, जिससे माताओं, बच्चों और बुजुर्गों को समय पर इलाज मिलता है और लोगों को दूर दराज के अस्पतालों में जाने की मजबूरी नहीं रहती है। श्रोताओं, इस योजना का एक और बड़ा लाभ है कि रोजगार और आत्मनिर्भर को बढ़ावा मिलता है। कौशल विकास केंद्रों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को हुनर सिखाया जाता है, जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सके या खुद की स्वरोजगार शुरू कर सके। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का लाभ केवल अल्पसंख्यक समुदाय तक सीमित नहीं है। हालांकि योजना अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए है, लेकिन इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी समुदायों के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। इससे सामाजिक समानता तथा आपसी भाईचारा मजबूत होता है। इस योजना से क्षेत्रीय असमानता कम होती है और विकास की संतुलन भी बनता है। गांव और कस्बों में सड़क, पानी, स्वच्छता और आवास जैसी सुविधाएं मिलने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह लोगों को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाता है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के संदर्भ में कहा है कि देश का विकास तभी संभव है जब विकास की रोशनी समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इसी सोच के साथ तैयार किया गया है ताकि अल्पसंख्यक, पिछड़े और जरूरतमंद क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना की पात्रता की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय पात्रता की। इस योजना का लाभ उन्हीं क्षेत्रों को मिलता है जहां अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार अधिक होती है। ऐसे जिले, प्रखंड, कस्बे या शहरी क्षेत्र जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। अब बात करते हैं लाभार्थियों की पात्रता की। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ सीधे किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समुदाय और क्षेत्र को मिलता है। इस योजना के तहत बनाए गए स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी और प्रशिक्षण केंद्रों का लाभ इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को मिलता है। इस योजना की एक और शर्त है कि योजनाओं का चयन राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं को प्रस्तावित किया जाता है और केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस योजना का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचाना है। इसी कारण इसमें आर्थिक स्थिति, जाति या वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को बाहर नहीं किया जाता है। जहां यह योजना लागू होती है वहां के सभी निवासी इसके लाभ के पात्र होते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे मुकेश कुमार शर्मा की वार्ता, विषय था प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। और इसी के साथ दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। रांची से कुड़ू भेजी जा रही अवैध शराब और शराब बनाने वाली अन्य सामग्री के साथ दो टेम्पो चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद लोहरदगा जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा के नेतृत्व में गठित पुलिस की छापेमारी टीम ने यह कार्रवाई की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ चल रही है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कृषकों एवं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम ग्रामीण श्रोताओं को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, आज हम बातें करेंगे पशुओं का टीकाकरण समय पर जरूरी क्यों है।

0: समय पर टीकाकरण से पशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और उन्हें जो बीमारी है उसे बचाया जा सकता है। पशुओं को बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए निश्चित ही कुछ खास उपाय करने चाहिए। जैसे अगर हम खुरपका रोग है होता है तो हर 6 महीने में ध्यान रखें कि पशु की उम्र 8 महीने से अधिक हो और वो गर्भवती ना हो। गलघोटू में साल में एक बार बारिश शुरू होने से पहले टीकाकरण करवाएं। लंगड़ा बुखार में साल में एक बार। कुछ खास सावधानियां भी रखें टीका लगवाते समय।
1: टीका हमेशा सुबह ठंडे वातावरण में लगवाएं। किसी भी

0: पशुओं का टीके समय पर टीकाकरण क्यों जरूरी है किसान भाइयों, जरा हम बात करें इस बात पे। कई सारी गंभीर बीमारियों से बचाव हो सकता है समय पर वैक्सीन लगवाने से। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू जैसी खतरनाक बीमारियां नहीं होती हैं। बेहतर उत्पादन भी होता है। स्वस्थ पशु सही समय पर दूध की अच्छी मात्रा देते हैं। बीमारी के कारण दूध उत्पादन में होने वाली गिरावट रोकी जा सकती है।
1: और आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं तो बीमारी के इलाज पर होने वाले खर्च और पशु के असमय मृत्यु से होने वाले भारी नुकसान से बचा जा सकता है। और संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या करेंगे तो टीकाकरण से एक पशु से दूसरे पशु या इंसानों में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की चैन टूट जाती है। और

0: अब कुछ जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण एक निर्धारित चार्ट के अनुसार किया जा सकता है। जैसे पशुओं का टीकाकरण चार्ट हम आपको बता दें, जैसे गलघोटू हो तो साल में दो बार यानी मई जून अक्टूबर नवंबर में आप पशु की उम्र और समय को देखते टीका लगवाएं, हर साल इसे दोहराएं। खुरपका मुंहपका रोग हो तो चार महीने की उम्र में पहला टीका, हर छः महीने में दूसरा टीका। लंगड़ा बुखार में छः महीने की उम्र में पहला टीका, हर साल बरसात से पहले दूसरा टीका। एंथ्रेक्स में छः महीने की उम्र में पहला टीका और हर साल एंडेमिक क्षेत्र में आप लगा सकते हैं।
1: और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको ग्रामीण भाइयों बता दें, जैसे कृमि नाशक टीका लगवाने से 10 से 15 दिन पहले पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर दें। केवल स्वस्थ पशुओं को ही टीका लगवाएं, बीमार या कमजोर पशुओं को टीका नहीं लगाना चाहिए। अपने क्षेत्र में फैलने वाली बीमारियों के अनुसार सटीक वैक्सीन की खुराक और समय जानने के लिए हमेशा अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से आप सलाह लें।

0: अभी आप शारदा सिन्हा की आवाज़ में लोकगीत सुन रहे थे। आइए आपको एक वार्ता सुनवाते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र से दी जाने वाली सुविधाएं, वार्ताकार है सोनी पांडे।
1: नमस्ते श्रोताओं, आज मैं एक ऐसे विषय पर जानकारी साझा करने जा रही हूं जो हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे राष्ट्र के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है। विषय है आंगनबाड़ी केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, यानी ICDS के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं तथा 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य पोषण और प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ना है। आज देश के लाखों गांवों और शहरों में आंगनबाड़ी केंद्र समाज सेवा का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले यदि हम पोषण सुविधाओं की बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराते हैं। हमारे देश में आज कई ऐसे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। प्राप्त पोषण न मिलने के कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खिचड़ी, दलिया, दूध, अंडा, फल तथा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को भी अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें यह समझाया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान संतुलित भोजन कितना आवश्यक है। आयरन, कैल्शियम और विटामिन युक्त भोजन के बारे में जानकारी देकर उन्हें स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया जाता है। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जाँच की जाती है। उन्हें समय पर टीकाकरण, दवाइयाँ और स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है। सुरक्षित प्रसव, स्वच्छता और नवजात शिशु की देखभाल के बारे में भी जागरूक किया जाता है। बच्चों का भी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। उनका वजन, लंबाई मापी जाती है ताकि उनके विकास की सही जानकारी मिल सके। यदि किसी बच्चे में कमजोरी या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की एक और महत्वपूर्ण सेवा है टीकाकरण कार्यक्रम। पोलियो, खसरा, तपेदिक और अन्य गंभीर बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा के लिए समय समय पर टीके लगाए जाते हैं। यह कार्य बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्रोताओं, आंगनबाड़ी केंद्र केवल स्वास्थ्य और पोषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का भी आधार माना गया है। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का पहला कदम आंगनबाड़ी केंद्र ही होते हैं। यहाँ बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। उन्हें कविता, कहानी, चित्र, गीत और नैतिक शिक्षा के माध्यम से सीखने की प्रेरणा दी जाती है। बच्चों को साफ सफाई, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार की भी शिक्षा दी जाती है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, अर्थात विद्या का धन सबसे बड़ा धन है। इसलिए बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आंगनबाड़ी केंद्र महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने में भी कार्य करते हैं। यहाँ महिलाओं को स्वच्छता, परिवार कल्याण, बेटी शिक्षा, महिला अधिकार, पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। कई स्थानों पर महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई या छोटे घरेलू उद्योगों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। आज समाज में महिला सशक्तिकरण की बहुत चर्चा होती है, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाओं को सही जानकारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो। इस दिशा में आंगनबाड़ी केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करती है। वे बच्चों के पोषण, स्वच्छता और टीकाकरण के बारे में जानकारी देती है ग्रामीण क्षेत्रों में तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के महत्व को समझें और उनके कार्यों में सहयोग करें। समाज के हर वर्ग तक इन सुविधाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। यदि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है या कोई महिला स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है तो यह केवल एक परिवार की ही नहीं पूरे समाज की चिंता का विषय है। हमें यह भी समझाना होगा कि बच्चों और महिलाओं में किया गया निवेश वास्तव में देश के भविष्य में किया गया निवेश है। जो हर बच्चा स्वस्थ और शिक्षित होगा, हर महिला आत्मनिर्भर और जागरूक होगी, तभी भारत एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। अंत में मैं अपने विचारों को संस्कृत के एक सुंदर श्लोक के साथ समाप्त करना चाहूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रानुपश्यन्तु, कश्चिद् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो और के साथ श्रोताओं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ग्रामीण भाइयों, अभी आप सोनी पांडे की वार्ता सुन रहे थे। विषय था एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र से दी जाने वाली सुविधाएं। और अब बातें करते हैं टपक सिंचाई के अनेकों लाभ की। टपक सिंचाई एक आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है। इसमें पौधों की जड़ों का प्लास्टिक पाइप और छोटे ड्रिपर के जरिए पानी बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इससे पानी की लगभग 65-70% बचत होती है और उपज 150% तक बढ़ जाती है। इसके कई लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है जल संरक्षण। पानी वाष्पीकरण और बहने से बर्बाद नहीं होता, सीधे जड़ों में जाता है। उर्वरक की बचत। पानी के साथ तरल उर्वरक यानी पोटेशियम भी सीधे जड़ों को दिया जा सकता है
2: और खरपतवार पर भी रोक लगता है। पूरी जमीन नहीं भीगती है जिससे आसपास खरपतवार नहीं पनपते हैं। अनुपयोगी जमीन के लिए भी उपयुक्त होता है। असमतल, रेतीली या पहाड़ी जमीनों पर भी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। लागत और सब्सिडी भी लाभ है इसमें। एक एकड़ में से लगाने का खर्च लगभग 40,000 से 80,000 तक आता है, जिस पर सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत 45 से 55

0: अब बातें सब्जियों में मल्चिंग की, तो सब्जी के बगीचे में मल्चिंग करना पानी बचाने और मिट्टी के सेहत सुधारने का बेहतरीन तरीका है। सब्जी के बगीचे में मल्चिंग के बहुत सारी बातें हैं। मल्चिंग से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है और सही तरीके से करने पर पौधों की वृद्धि को भी बढ़ावा मिलता है। खुली मिट्टी का खाली मैदान अधिकांश बागवानों को पसंद नहीं आता और यह प्रकृति में भी अक्सर नहीं पाया जाता है। अधिकांश जलवायु में पौधे तुरंत उगना शुरू कर देते हैं ताकि खाली मैदान को ढककर उसकी रक्षा कर सकें और उसे अपनी जगह पर बनाए रख सकें। अपनी सब्जी की बागों में हम अक्सर उन खरपतवारों को हटा देते हैं जो वास्तव में हमारी मुख्य फसल के लिए अनुपयुक्त पौधे होते हैं, ताकि हमारे मुख्य पौधों की वृद्धि हो सके और प्रतिस्पर्धा कम हो सके। इससे खाली मैदान बन जाते हैं। अपनी सब्जी की बाग में मल्चिंग करके आप अवांछित पौधों की प्रजातियों के बीजों के अंकुरण को कम कर सकते हैं और खाली मैदान को हटाकर अपने बगीचे को अधिक सुंदर बना सकते हैं। हालांकि इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उसे लगाने के तरीके और स्थान के आधार पर इसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। सब्जी के बगीचे में मल्चिंग करने के 4 मुख्य लाभ हैं: मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अवांछित पौधों के अंकुरण पर नियंत्रण और सुंदरता में वृद्धि। सब्जी के बगीचों में मल्चिंग करने के कुछ फायदे बता दें। मिट्टी संरक्षण और जल संरक्षण। मल्च एक आवरण परत प्रदान करता है जो पानी और हवा से होने वाले कटाव को कम करने में मदद करता है। मल्च सर्दियों में मिट्टी को उष्मायुक्त रखने और तापमान बढ़ाने में भी सहायक होता है। गर्मियों में यह मिट्टी को छाया प्रदान करता है और वाष्पीकरण को कम करता है, जिससे नमी का स्तर स्थिर रहता है और मिट्टी का तापमान ठंडा बना रहता है। मिट्टी को मल्च से ढकने से धूप में तपती नंगी मिट्टी से मिट्टी के वाष्पीकरण के कारण बनने वाली कठोर पपड़ी भी कम हो जाती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मिट्टी का स्वास्थ्य मल्च ना केवल आपकी मिट्टी के लिए बल्कि मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के लिए भी एक सुरक्षात्मक परत प्रदान करता है जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी में पोषक तत्वों के चक्र के लिए सूक्ष्म जीव अत्यंत आवश्यक है। वे मिट्टी को मथते हैं और उसे ढीला और भूरा बनाए रखते हैं, जिससे बागवानों के लिए मिट्टी की जुताई करना आसान हो जाता है। आपके द्वारा चुने गए मल्च के प्रकार के आधार पर सूक्ष्म जीव मल्च को भी तोड़ते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं। अवांछित पौधों पर नियंत्रण और सौंदर्य भी इसके कई लाभ हैं। हालांकि कई बागवानों को खरपतवारों से भरा बगीचा पसंद नहीं होता, लेकिन खुली मिट्टी भी देखने में अच्छी नहीं लगती। मल्च इन दोनों समस्याओं का समाधान करता है। मिट्टी में मौजूद कई छोटे बीज मल्च की मोटी परत से होकर नहीं उग पाते। साथ ही मल्च मिट्टी तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को कम करता है, जो फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह उन पौधों को बढ़ने से रोकता है जिनके बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अपने बगीचे में मल्चिंग करते समय पौधों और मल्च के बीच हवा का अंतर छोड़ना महत्वपूर्ण है। सब्जी के बगीचे में मल्चिंग करने के कई नुकसान हैं, उसको भी आप जान लें। मल्च अवांछित पौधों की वृद्धि को रोकने में कारगर है, लेकिन यह कोमल शाकीय पौधों और छोटे पौधों के विकास के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि मल्च की मोटी परत उन्हें बढ़ाने में कठिनाई पैदा करती है। इन पौधों से मल्च को थोड़ा दूर रखना सबसे अच्छा है ताकि उन्हें अच्छी हवा मिल सके और बढ़ने फूलने के लिए पर्याप्त जगह हो। लकड़ी के बुरादे और छाल जैसे मोटे भारी कार्बनिक पदार्थों से बने मल्च अल्पावधि में मिट्टी से महत्वपूर्ण नाइट्रोजन को छीन सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मल्च को विघटित करते हैं। बगीचे की मिट्टी की मैनुअल जुताई करने के लिए कुछ मल्च को हटाना पड़ता है। यदि मल्च के लिए गलत सामग्री का चुनाव किया जाता है तो अवांछित पौधों के बीज आपके बगीचे में फैल सकते हैं। अपने बगीचे के लिए मल्च के रूप में बीज रहित पौधों की सामग्री का उपयोग करना सबसे अच्छा है। कुछ कीट जैसे कि स्लग और घोंघे भी मल्च की परतों से लाभ उठा सकते हैं और उनमें शरण पा सकते हैं, इसलिए मल्चिंग करते समय स्ट्रॉबेरी यानी फ्रेंगारिया और लिट्यूस लैक्टुका सैटिवा जैसे अपने कोमल कम ऊंचाई वाले पौधों पर नज़र रखें। मल्च कभी कभी स्लग और घोंघे जैसे कीटों को आश्रय दे सकता है।

0: अधिकांश सब्जियों के पौधों को मल्चिंग से लाभ होता है, विशेषकर उन पौधों को जो जमीन से काफ़ी ऊपर उगते हैं और अपनी मिट्टी को ज़्यादा छाया नहीं देते। इनमें टमाटर, आलू जैसी नाइटशेड सब्जियां, साथ ही फलियां और खीरा जैसी बेलें शामिल है। तोरी, कद्दू और स्ट्रॉबेरी जैसे कम ऊंचाई वाले पौधों को भी मल्चिंग से फ़ायदा होता है। मल्च मिट्टी के कटाव को रोकती है और साथ ही मिट्टी को कम ऊंचाई वाले पौधों की पत्तियों और फलों पर गिरने से भी बचाती है।
1: मल्चिंग कैसे करें, हम चरण दर चरण बताते हैं। सबसे पहले खेत की तैयारी कर लें। खेत की अच्छी तरह उताई करके उसे समतल भुरभुरा बना लें। इसके बाद मिट्टी की जांच के आधार पर आवश्यक जैविक खाद और उर्वरक मिलाएं। उठी हुई क्यारियां बनाएं। मल्चिंग करने के लिए मिट्टी के सपाट स्तर के बजाय 1 से 1.5 फीट ऊंची उठी हुई क्यारियां बेड बनाई जाती है, इससे जल निकासी अच्छी रहती है।
0: और ड्रिप सिंचाई पाइप कैसे बिछाएं, पानी बचाने और पौधों को सीधे जड़ों में पानी देने के लिए प्रत्येक बेड के बीचों बीच ड्रिप पाइप या सिंचाई लाइन बिछाएं। मल्चिंग शीट बिछाना, बाजार में मिलने वाली मल्चिंग पेपर शीट यानी प्लास्टिक फिल्म को बेड के ऊपर सीधा फैलाएं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें कि शीट का किनारा लगभग 3 से 4 इंच मिट्टी में अच्छी तरह दबा हो ताकि तेज हवा से उड़े नहीं। पौधे के लिए छेद करना, मल्चिंग शीट बिछाने के बाद तय दूरी के हिसाब से शीट पर छोटे छोटे छेद करें। इसके लिए आप गर्म लोहे के पाइप या विशेष टूल का उपयोग कर सकते हैं। बीज या पौधे लगाना, इन छेदों में आप सीधे बीज बो सकते हैं या नर्सरी में तैयार किए गए पौधों जैसे टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च आदि को भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मल्चिंग की उचित विधि की। तो पेड़ की शाखाओं के सबसे बाहरी किनारे तक, जिसे ड्रिप लाइन कहा जाता है, जितना संभव हो सके उतनी जगह को आप मल्च से ढक दें। ध्यान रखें कि पेड़ के बढ़ने के साथ ड्रिप लाइन भी फैलती है। 2 से 4 इंच की जैविक मल्च की परत आदर्श है, लेकिन यदि मिट्टी में जल निकासी की समस्या हो तो आवश्यकता अनुसार मात्रा कम कर लें। तो ग्रामीण श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कृषकों एवं ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप कृषकों को संबोधित कार्यक्रम सुनेंगे किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: सबसे पहले बातें समसामयिक कृषि कार्य की। श्रोताओं, तो मौसम नम एवं अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा। लगातार हल्की से मध्यम वर्षा के कारण तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं है। गरज चमक, तेज हवाओं और बढ़ती वर्षा गतिविधियों के कारण मौसम अस्थिर रहेगा। फसलों का गिरना और फलों का टूटना जारी रहेगा। पिछले दिनों हुई वर्षा तथा आने वाले दिनों में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई किसी भी फसल की बुआई से पहले जल निकासी सुनिश्चित कर लें, तभी बुआई के लिए जाएं। विभिन्न खरीफ फसल की बुआई का उपयुक्त समय जुलाई तक है, तो धान के फसल को छोड़कर अन्य सही फसल की बुआई मेड़ बनाकर ही करें। रोपा धान वाले खेतों में जल जमाव के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें और विभिन्न सब्जियों और फसलों के खेतों से समुचित जल निकास के लिए व्यवस्था बनाए रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई रोक दें और जल निकासी की सुविधा रखें। परिपक्व सब्जियों की तुड़ाई और गर्मा मक्का की कटाई के लिए साफ मौसम का इंतजार करें। मौसम साफ होने तक खाद या कीटनाशकों का छिड़काव रोक दें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे बना लें। टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल जो 35 से 40 दिन पुराने हों, उनमें निकाई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण कर लें। बात करते हैं रागी की, तो किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 3 सप्ताह पुरानी रागी की फसल की रुपाई करें। रुपाई से पहले जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम और फॉस्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से उपचार करें और अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी जरूरी है। इस उपचार से बीजों के अंकुरण और उत्पादन वृद्धि होती है। अरहर की उन्नत किस्में हैं LRG 41, बिरसा अरहर 1, नरेंद्र अरहर 1 एवं 2, बहार ICPH 2671, इनमें से किसी एक किस्म का चुनाव करें।
1: अब बात करते हैं मक्का की, तो मिट्टी में मौजूद नमी का इस्तेमाल करके बुआई का काम पूरा करें और यह पक्का करें कि पानी की निकासी ठीक हो ताकि जड़ों के आसपास पानी जमा न हो। फॉल आर्मी वॉर्म के प्रकोप पर नज़र रखें। पौधों के ऊपरी हिस्सों को नियमित रूप से जांच करें। बारिश के बाद निराई गुड़ाई से जुड़े जरूरी काम और खर पतवार हटाने का काम करें। नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग तभी करें जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस, 16 किलोग्राम पोटाश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से डालें और नील हरित शैवाल 1 पैकेट प्रति एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा रहता हो ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। और भिंडी में एलोवेन मोजैक वायरस को नियंत्रित करने के लिए नीम का तेल 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के साथ सुबह के समय छिड़काव करें या इस रोग को नियंत्रित करने के लिए पीले चिपचिपे जाल का उपयोग करें। अब बात करते हैं मुर्गी पालन की, तो हवा में नमी अधिक होने की स्थिति में फंगल रोग की संभावना अधिक रहती है, इसलिए पोल्ट्री कूड़े से चूना मिलाएं और 7 दिन के चूजों को RD का टीका दें। कोक्सीडायोसिस को रोकने के लिए पशु चिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करें। आवश्यकता से अधिक मुर्गियां न रखें। पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ाएं और धातु के बर्तनों का प्रयोग न करें और ताज़ा ठंडा पानी दें। तो ये हुई बातें समसामयिक कृषि कार्य की और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर होंगे।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप तमाम किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसानवाणी में। और आइए आप सुनवाते हैं भेंटवार्ता। विषय है ओल की वैज्ञानिक खेती। भेंटवार्ताकार है कृषि विशेषज्ञ क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार। बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
7: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। ग्रामीण भाई बहन, हम कार्यक्रम में आज बातें करेंगे व्यावसायिक खेती की, और व्यावसायिक खेती में हम विशेष रूप से ओल की बात आपको करने जा रहे हैं किसान बंधु। और ओल की खेती हम किस प्रकार से करें, कौन से कीड़े मकोड़े से उसको सुरक्षित करें, क्या क्या खाद उर्वरक का व्यवहार अपने खेतों में करें, और कौन से उन्नत प्रभेद को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम प्राप्त करें, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी आज आपके साथ साझा करने के लिए हैं पलामू जिला के कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है आपका सरकार का। मैं नमस्कार।
8: नमस्कार।
7: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताया जाए कि व्यावसायिक रूप से हमारे किसान बंधु किस ओल की खेती करेंगे, उसके उन्नत प्रभेद क्या है, और कीड़े मकोड़े से किस प्रकार रक्षा करेंगे, क्या क्या खाद उर्वरक का व्यवहार करेंगे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें।
8: किसान भाइयों, आज हम आपको बता रहे हैं कि ओल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें या ओल की व्यवसायिक खेती कैसे करें। ओल यानी कि आप लोग देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में सूरन भी बोलते हैं, और ये सब्जी के लिए और ये औषधीय के रूप में, अचार के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। अगर अच्छे ढंग से बनाया जाए तो ये नॉन वेज की तरह लगता है, और इसको बड़े चाव से लोग खाते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे कि ये किस तरह की मिट्टी में के लिए उपयुक्त है। इसके लिए तो हम लोग देखते हैं कि अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें बारिश आए और पानी रुके नहीं और वो निकल जाए, जल निकासी हो जाए। और बलुई दोमट हल्की मिट्टी होती है, जिसकी खेत तो किसान भाई बालू का अंश अच्छा हो, दोमट मिट्टी हो, बलुई दोमट, तो उसमें जो है इसका ओल का उत्पादन अच्छा होता है। हालांकि हम लोग खेतों के साथ साथ में जो है, हम लोग इसको बगीचा में भी हम लोग इसका उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपके बगीचा के बीच में भी इसकी खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये छायेदार जगह में भी इसका उत्पादन होता है। तो हम लोग आइए चर्चा करते हैं कि इसकी कौन सा प्रभेद की जो है हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बाजार में जो उपलब्ध है ओल की, तो वो गजेंद्र ओल होता है, जो कि एक ही 2 kg का 3 kg का 4 kg का होता है, और जिसमें टेढ़ा वड़ा नहीं निकला रहता है। किसान भाइयों, ये हम लोग जब बात करते हैं ओल की, तो देसी ओल और ये जो प्रभेद है गजेंद्र ओल, जो बड़ा का साइज का होता है, तो देसी ओल 2 या 3 साल में जो है 250 ग्राम से आधा kg के होता है, और इससे हम लोग व्यावसायिक उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लाभ नहीं ले सकते हैं। और ये खाने के, कभी कभी लोग किसान कहते हैं कि खाने में ये थोड़ा कम स्वादिष्ट लगता है और देसी ओल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बता दूं कि देसी ओल में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज इसका इस्तेमाल करते हैं, और उतना ही इसमें इस्तेमाल करें तो ये भी स्वादिष्ट लगता है। तो ये रही खाने की बात, लगाने की विधि किसान भाई जान जाएं, इसका जो लगाने का विधि और समय, तो समय हमारा उपयुक्त है 15 मार्च के बाद हम लोग जब गर्मी पड़ती है, 15 मार्च से लेकर हम लोग मई तक गर्मी जब ज्यादा खूब पड़ती है इसका लगाने का सबसे उपयुक्त समय है। सिंचित अवस्था और असिंचित अवस्था, यानी सिंचाई की सुविधा है तो हम लोग इसको अप्रैल में मई में लगा सकते हैं।

0: किसी किसान के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो जून और जुलाई के महीने में जब वर्षा आ जाती है तब इसबगोल की खेती कर सकते हैं, तो दोनों स्थिति में ये कर सकते हैं। तो हम लोग लगाने की विधि की चर्चा कर लें पहले किसान भाई, कि जब भी गोल की खेती करें तो हम लोग गड्ढा करते हैं, तो गड्ढा की जो है गहराई और चौड़ाई जो है 40 सेंटीमीटर के आसपास, माने सवा फीट के आसपास में हम लोग गड्ढा करते हैं और जो है उसमें मिट्टी कंपोस्ट मान का खाद डाल के हम लोग उसको भरते हैं। लेकिन भरने के पहले उसको बीज उपचार जरूर कर लें, क्योंकि जब किसी चीजों को हम लोग गजेंद्र वोल की बात करते हैं तो ये कोई 2 किलो का होता है, कोई 3 किलो का होता है, कोई 1 केजी का होता है, तो हम लोग कितना बड़ा टुकड़ा को लगाएं।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग जो है 500 ग्राम के आसपास अगर हम लोग व्यवसायिक दृष्टिकोण से ओल की खेती करते हैं तो 500 ग्राम का टुकड़ा होना चाहिए। कैसे काटे किसान भाई, तो देखे होंगे ओल जब रहता है तो उसके बीच में गड्ढा होता है
1: जी।
0: तो ऐसे काटें जैसे 1 किलो का ओल है तो आप काटते हैं तो बीच में अगर काटते हैं तो आधा आधा केजी का हो जाए, लेकिन गड्ढा वाला हिस्सा दोनों हिस्सा में रहना चाहिए।
1: अच्छा,
0: वहीं से आंख निकलता है, वहीं से वो निकलता है ओल, इसलिए गड्ढा का हिस्सा। अगर हम लोग 2 किलो का ओल है तो हम लोग उसमें एक प्लस तरह का चाकू लगाएंगे बड़ा वाला, तो 4 टुकड़ा में काट देंगे, एक बार चाकू सीधा एक बार हम लोग हॉरिजेंटल लगाएंगे, और लेकिन चारों हिस्सा में वो गड्ढा वाला हिस्सा अवश्य रहे। जब किसी चीजों को हम लोग काट देते हैं तो बीज उपचार करना अवश्य हो जाता है। तो हम लोग किसी भी फफूंद नाशक दवा कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करेंगे और टब रखेंगे, उसमें 15 लीटर पानी रखेंगे और 30 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर को डाल देंगे।
1: अच्छा,
0: तो 30 ग्राम डाल के घोल लिए और सभी ओल को जो है हम लोग डुबा डुबा के उसमें निकाल लेंगे और 5 मिनट रख के निकाल देंगे। अब ओल का बीज जो है उजला हो जाएगा, यानी बीज उपचार हो गया, अब उसमें सड़ने की संभावना कम हो गई। तो हम लोग जो है देखते हैं कि जहाँ पर जो पोर्शन गड्ढा कर दिए थे, गड्ढा करने के बाद किसान भाई उसकी मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, उसमें मान का खाद और उर्वरक जो हम लोग अभी बात करेंगे उसकी चर्चा भी करेंगे, तो उसको हम लोग डाल के गड्ढे को भर देते हैं।
1: अच्छा।
0: और फिर हम लोग 6 इंच में ऊपर से गड्ढा करके उस ओल को नीचे डाल देते हैं और कटा वाला पोर्शन जो गड्ढा वाला पोर्शन है उसको ऊपर रखेंगे
1: जी, जी,
0: और 1 इंच मिट्टी से ढक देंगे।
1: अच्छा।
0: और इस तरह से ढकने के बाद हम लोग उसका पटवन करते हैं।
1: अच्छा।
0: अब ये देखिएगा किसान भाई, जब हम लोग इसकी पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, हम लोग अगर हम लोग सिर्फ ओल की खेती करते हैं तो हम लोग 2-2 फीट की दूरी पर एक एक पौधे को लगाते हैं।
1: अच्छा।
0: और लाइन से लाइन की दूरी भी हम लोग 2 फीट रखते हैं
1: जी।
0: अगर किसान भाई अगर आप उसमें इंटर क्रॉप के रूप में भिंडी हो या फ्रेंच बीन लगाना चाहते हैं तो आप लोग 2-2 लाइन उसमें लगा सकते हैं, तब ओल की दूरी एक ओल से दूसरे ओल की दूरी 2.5 फीट रखेंगे, यानी 6 इंच हम लोग बढ़ा देते हैं और 2 लाइन उसमें हम लोग भिंडी और वो लगाते हैं। क्योंकि जब इसका हम लोग पटवन करेंगे अप्रैल महीने में लगा के, और उसमें भिंडी का सीजन भी होता है, फ्रेंच बीन का सीजन होता है, लत वाली सब्जियों को नहीं लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: नहीं तो फिर ओल पर चढ़ जाएगा, तो हम लोग लत वाली सब्जियों को नहीं लगाएंगे और उसी पटवन में आपका ओल भी होगा और उसी पटवन में आपका भिंडी और ये भी, यानी ओल निकालने का लगाने का खर्च भी हम इंटर क्रॉप के रूप में इन सब्जियों से निकाल लेते हैं
1: जी। बात चुकी इंटर क्रॉप की चल रही है सर, तो ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं तो वहाँ हमारे किसान भाई इसे लगा सकते हैं।
0: जहाँ छायेदार चीज है वहाँ पर सिर्फ ओल की खेती करेंगे।
1: अच्छा।
0: वहाँ पर इंटर क्रॉप नहीं होगा। जहाँ पर हम लोग खुले जगहों में लगा रहे हैं वहाँ पर इंटर क्रॉप की बात करते हैं ज्यादातर अमूमन किसान, चूंकि यह बगीचा में भी हो सकता है हल्दी और अदरक की तरह।
1: अच्छा।
0: इसलिए हम लोगों ने उसकी चर्चा की अगर लगाते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग इंटर क्रॉप के रूप में नहीं लगा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन इसमें जो है हम लोग बाहर में लगा सकते हैं। तो किसान भाई आपने देखा कि किस तरह से सिंचित अवस्था में कितनी पौधों से दूरी होना चाहिए। अब हम लोग बीज दर की बात कर लें कि अगर हमें 1 हेक्टेयर लगाना है 140 क्विंटल बीज लगेगा
1: जी,
0: और अगर हमें 1 एकड़ लगाना है तो 55 क्विंटल बीज लगेगा
1: जी।
0: या किसान भाई आप अपनी भाषा में बात करें तो 1 कट्ठे में 2 क्विंटल लगेगा।
1: अच्छा।
0: यानी 4.25 डिसमिल में 2 क्विंटल बीज लगेगा और 60 रुपया प्रति किलो की दर से 12 रुपया आपको 1 कट्ठे में बीज लगेगा।
1: बीज
0: जब इसकी हम लोग 8 महीना हो जाए किसान भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दुर्गा पूजा का सीजन आ जाएगा और हम लोग दुर्गा पूजा के में ओल की खेती, ओल का जो है खाना आरंभ कर देते हैं
1: जी।
0: और उस समय जो है हम लोग गड्ढा खोदकर ओल को निकाल लेते हैं
1: जी।
0: तो अब देखते हैं कि एक ओल जो हमने 500 ग्राम का लगाया था वो अब जो है उससे जो है
1: 2 केजी
0: उससे आपका जो है 3.5 गुना ज्यादा हो गया।
1: वाह।
0: तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर हम 2 क्विंटल बीज लगाए थे तो अब आपके पास 7 क्विंटल ओल कम से कम एक कट्ठे में हो गया। यानी कि हम लोग जो है इसकी लागत खर्चा की बात करें तो लागत खर्च जो है 1 एकड़ में हम जो जो लोग 3.5 लाख से 4 लाख रुपया 1 एकड़ में खर्च लगेगा, बीज का खर्च, कंपोस्ट का खर्च, सिंचाई का खर्च, अन्य खर्च खेती में जो लगता है, और उसका जो शुद्ध लाभ हमको प्राप्त होगा वो आपको जो है 6 लाख रुपया प्रति एकड़, यानी लगाने का खर्च 4 लाख काट दिया जाए तो हमको 6 लाख रुपया शुद्ध आमदनी होती है। ऐसे 10 लाख आमदनी हुई और 4 लाख को हम लोग खर्च को काटें तो 10 लाख रुपया प्रति एकड़ की आमदनी होगी, जिसमें कि शुद्ध लाभ जो है 6 लाख रुपया प्रति एकड़ किसान भाई होगी। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें किसान भाई आप देखते हो कि इसमें रोग और व्याधि का भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अमूमन एक पीला होने वाला जो होता है ओल की पत्तियां डंठल पीला हो जाता है, तो फफूंद नाशक दवा का हम लोग स्प्रे कर देते हैं और उर्वरक को हम लोग लगाने के समय NPK का उर्वरक जो इस्तेमाल करते हैं 100-60-80, यानी कि 100-60-80 के रेशियो में हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं, DAP और पोटास और नत्रजन, और 30 दिनों के बाद एक बार निकाई गुड़ाई करते हैं और 60 दिनों के बाद निकाई गुड़ाई करते हैं। दोनों के बाद निकाई गुड़ाई करने के बाद हम लोग पुनः उर्वरक का प्रयोग करते हैं और सिंचाई की जो सुविधा है हम लोग जून तक सिंचाई देते हैं और जून के बाद वर्षा आरंभ हो जाती है तो जून से लेकर हमारा अक्टूबर अगस्त तक हम लोग उसकी जो है सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, ऊपर के वर्षा से होती है। किसान भाई कभी भी ओल की खेती करने के बाद, ओल निकालने के बाद तुरंत बाजार में बेच दें, ये देखें कि नहीं दे, बेचने से क्या होता है कि जो आप अगर निकाल के अपने घरों में रख लेते हैं तो फिर मॉइस्चर लॉस हो जाता है, यानी कि 2 किलो का वो जो है घटकर 1-2 महीने के बाद में 1.5 किलो का हो जाएगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर किसी को बीज के रूप में रखना है किसान भाई तो वो उसी समय फरवरी के महीने में उसको निकालेंगे और अप्रैल के महीने में पुनः लगा देंगे। यानी अगर बीज के रूप में रखना है हमको तो हम लोग बीज के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम लोग बीज में बेच देते हैं। तो अगर आप 8 महीने की फसल है, 6 महीने में आप 6 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा निकाल के आप उसकी बिक्री कर सकते हैं जैसा रेट रहता है। अब बाजार में देखते हैं ओल जो है 80 रुपया के बाद हम लोग करते हैं, अभी तो हम लोग 60 रुपया के हिसाब से जोड़ा किसानों को, तो और लाभ ज्यादा बढ़ सकता है,
1: विशेषकर दुर्गा पूजा में इसकी मांग ज्यादा
0: मांग, और ये निकलता है दुर्गा पूजा के आसपास। तो आप लोग अगर हल्की मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, आलू वाली खेती जिस तरह करते हैं अच्छी जुताई करके, आप किसान भाई मेढ़ों पे भी लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो मेढ़ पे लगाने से क्या होता है कि उसका जो है गड्ढे के गड्ढा खोदते हैं तो उसमें फैलने का चांसेस, मिट्टी ढकने का चांसेस बढ़ जाता है, जिसके चलते हम लोग उसका उत्पादन और बढ़ जाता है। और अमूमन इसको जानवर नहीं खाता है तो ये होती है कि यहाँ पर जानवर की चरने की समस्या है, तो जानवर से भी हम लोग प्रोटेक्शन हो जाता है अगर ओल की खेती करते हैं।
1: अच्छा, बात चूंकि जून तक आप बोल रहे थे सिंचाई के लिए, तो जून तक में कैसे किस कैसे देखते हुए हमारे किसान भाई सिंचाई,
0: किसान भाई हाँ एक बार ध्यान देंगे कि हम लोग पहली बार में जब है ओल को आपने मिट्टी में दबा दिया तो 3 पटवन 7-7 दिन के बाद करेंगे, तब 20 से 25 दिनों के बाद बस करेल की तरह ओल निकलना शुरू हो जाता है, घबराए नहीं तब तक, 25 दिनों के बाद ओल निकलता है, 20 दिनों के बाद निकलता है, तो कभी कभी चिंतित हो जाते हैं किसान की ओल नहीं निकल रहा है। और उसके बाद में हम लोग पटवन, जिसके पास सिंचाई की सुविधा है वही किसान अभी करेंगे, और जिसके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वो आप जो है जून जुलाई में खेती करेंगे
1: जी।
0: तो हम लोग अपने क्षमता के अनुसार, किसी किसान के पास 4 कट्ठा 5 कट्ठा में ओल करते हैं या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम करके अच्छा आय का स्रोत प्राप्त कर सकती हैं और इसकी बिक्री में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक कहावत है कि भादो महीना में ओल के जो खाता है या तो राजा होता है या तो चोर, यानी कि ये इतनी महंगी सब्जी है कि जिसको कि या तो मैंने अच्छे पैसे वाले खरीदते हैं या फिर कोई चोरी करके खा जाए, तो इस तरह की चीजों को हम लोग जो है ओल की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा, कंद ज्यादा बैठे इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें?
0: किसान कंद ऐसा बैठे, ये जो बैठे इसके लिए हम लोग बलुई दोमट और मान का खाद, कंपोस्ट का खाद और
1: अधिक
0: उसमें डालते हैं और गड्ढा का साइज हम लोग इस तरह से करते हैं कि जो भुरभुरी मिट्टी होती है ना,
1: अच्छा,
0: इसमें विकास ज्यादा होता है। अगर काली मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, तो इसमें ओल का विकास कम होता है, तो उसमें उत्पादन हमारा कम हो सकता है। यानी कहने का मतलब जो हम लोग 3.5-4 गुना ओल जो होता है ये हमको बलुई दोमट मिट्टी में अच्छा है। और किसान कोई अच्छी से और इससे खेती करता है तो उसका जो है 4 गुना से भी बड़ा ओल हमारा निकल सकता है। तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, किस तरह से खेती,
1: मतलब मिट्टी जितनी भुरभुरी करें वो आपको फायदा।
0: हाँ, मिट्टी जितनी भुरभुरी हो और तो उसमें ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा
1: जी। अच्छा, ओल की व्यावसायिक खेती से संबंधित और वैसी कोई बातें, महत्वपूर्ण बातें जो छूट रही हूँ?
0: किसान भाइयों, अगर इसका बीज को उपलब्धता की बात होती है तो हमारे यहाँ से जितने भी लोग हैं समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इस सब एरिया में बड़े पैमाने पर ओल होती है और यहाँ पर भी किसान जो है ओल की खेती करते हैं वहाँ से। हाँ, बाजार से जो ओल बिक रहा है उस ओल का

0: करें और बीज उपचार करके अवश्य लगाएं ताकि आपका ओल का उत्पादन अच्छा होगा
1: जी। मतलब आंखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इसमें। आप थे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे ग्रामीण भाइयों को ओल की व्यावसायिक खेती से संबंधित विस्तृत जानकारियां साझा की आपने। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

फिर 7 से 11 दिनों के बाद उनमें व्यस्क मक्खी निकलकर फिर से सब्जियों के अंदर अंडे देती है। इसके नियंत्रण के लिए आप खेत की सफाई रखें, गर्मियों में खेत की जुताई करनी चाहिए ताकि जमीन के अंदर छिपे कीट ऊपर आकर मर जाए। समय से बुआई करना चाहिए, फलों की तुड़ाई सही समय पर करना चाहिए। फल मक्खी से ग्रसित फलों को एकत्रित कर जमीन में दबा देना चाहिए। ये हुई बात है लतर वर्गीय सब्जियों के कीट और नियंत्रण की। और अब आज का मौसम,

0: किसान भाइयों, अब चलते चलते आज की नसीहत में बात करते हैं पशुओं के संक्रामक रोग और निदान की। तो पशुओं में कई तरह के जीवाणु और विषाणु जनित संक्रामक रोग होते हैं जो एक से दूसरे पशु में बहुत तेजी से फैलते हैं, जैसे खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, थनैला, लंपी और रेबीज। यह विषाणु जनित अत्यधिक संक्रामक रोग है। इसमें पशुओं का तेज बुखार होता है, मुंह से लार टपकती और मुंह जीभ और खुरों के बीच छाले और घाव हो जाते हैं। बचाव के लिए पशुओं को हर 6 महीना में नियमित टीकाकरण करवाएं। तो किसान भाइयों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस साल रांची भी करेगा डूरंड कप की मेजबानी। रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने मेले में शामिल होने के लिए दिया मुख्यमंत्री को आमंत्रण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रामगढ़ में आयोजित जनसंवाद में लिया भाग। कहा, विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई में किया निर्यात। और बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष डूरंड कप, राष्ट्रपति कप और शिमला ट्रॉफी के चैंपियन बनने के लिए नई टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग के अलावा इस साल डूरंड कप की मेजबानी रांची भी करेगा। उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से रथ यात्रा मार्ग तथा मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने रथ यात्रा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने, पर्याप्त चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत और अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने कहा कि रथ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए रथ यात्रा महोत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित रसदा गांव में विस्थापन समस्या को लेकर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विस्थापित ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कहा कि विकास भी जरूरी है, लेकिन विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है।
2: विस्थापन की समस्या जब झारखंड राज्य अलग मना था तो विरासत पे ये समस्या झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ और विकास के नाम पर अगर उनकी जमीन कोई ऐसे कंपनी लेता हो तो उससे विस्थापित जो हुए हैं उनकी रक्षा भी करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा परिणाम को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जेपीएससी 14वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया। इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त अनुप कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलको और शिव पूजन पाठक ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने सभी आयुक्तों को शुभकामनाएं देते हुए निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ दायित्व निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है तथा राज्य सूचना आयोग की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये आम गुमला और देवघर जिलों की महिलाओं की ओर से संचालित 3 किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन कंपनियों का विकास बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है। मंत्रालय के अनुसार इस पहल से किसानों को स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 180% अधिक मूल्य मिला है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। राज्यपाल से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा दोषियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया गया।
3: तो जमशेदपुर में विगत 27 जून को जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में 2 युवाओं पर चापड़ से हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक का भी इलाजरत है। अपने जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के बहन में जाकर घुसने का काम और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस बहन ने भी घुस करके उन बच्चों पर चापड़ से हमला करने का काम किया।
0: कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की है। जो किसान मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें प्रति एकड़ 3,000 रूपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्रीमती तिर्की आज हजारीबाग में पिछले 29 जून से आयोजित सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने राज्य के कम वर्षा क्षेत्र के लिए रिलीफ फंड जारी करने की मांग केंद्र सरकार से की।
4: वर्ष एल नीनो का असर पड़ने वाला है। सभी किसानों से निवेदन है कि सही समय में बिचरा कर मेरे कोई बंदी करे ताकि पानी को लोग सुरक्षित रख पाए। आज मिशन का भी रजिस्ट्रेशन किसानों का कराना शुरू किया। आज पूरे राज्य भर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें लगभग सभी किसानों को जो मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें 3,000 रूपया प्रत्येक एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार देगी।
0: बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। मौसम। पिछले 3 दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से किसानों में जहां हर्ष है वहीं आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने रांची मौसम केंद्र ने 10 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 डोरंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस साल रांची भी करेगा डोरंट कप की मेजबानी। रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने मेले में शामिल होने के लिए दिया मुख्यमंत्री को आमंत्रण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रामगढ़ में आयोजित जनसंवाद में लिया भाग। कहा, विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई में किया निर्यात। और बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर में 3 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यह बंद शहर में बढ़ते अपराध, ब्राउन सुगर के बढ़ते कारोबार और करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के विरोध में बुलाया गया था। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, अपराधी बेखौफ होकर हत्या, रंगदारी और नशे के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, जबकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है।
2: इस शहर में सत्ता चल रहा, मटका चल रहा, जुआ चल रहा है, चापर चल रहा है और हत्या चल रही है। एक हिमांशु की हत्या होती है, कई हिमांशु की हत्या हो जाएगी। चैन छिनता ही तो आम हो गया और दोनों हाथ भी काट दे रहे हो। बिरसा नगर की घटना हुई है, हम सभी लोग जानते हैं कि बिना पुलिस के साठ गांठ में इतना बड़ा क्राइम को कोई मर्द नहीं है इस शहर में कि उसे अमली जामा पहना दे। एक खाकी वर्दी से पिछले दिनों के पीढ़ियां डरा करती थी, आज वही खाकी वर्दी के PCR बैंत निकाल कर उसे चाकू मारा जाता है और PCR वैन में बैठे हुए हमारे अधिकारी पदाधिकारी हाथ में राइफल लेकर के शोभा बढ़ा रहे थे। अब सोची लानत है, एक माँ की कोख सुना हो गया। हम आने वाले पीढ़ियों में और हिमांशु की मौत ना हो जाए, ब्राउन शुगर का कारोबार बढ़ना चाहे, जब तक आप रावण के नाभि का इलाज नहीं करोगे सर काटते रह जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला इस शहर में नहीं है।
1: जमशेदपुर प्रधान डाकघर में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत स्पीड पोस्ट सेल बुकिंग कियोस्क की शुरुआत की गई। इस नई सुविधा से अब लोगों को स्पीड पोस्ट बुक कराने के लिए लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक स्वयं पार्सल का वजन कर, पता दर्ज कर और UPI QR कोड या कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर कुछ ही मिनटों में स्पीड पोस्ट बुक कर सकेंगे। वरीय डाकपाल सुधीर कुमार ने कहा कि यह सुविधा डाक सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगी।
3: सेल बुकिंग कियोस्क मशीन हम लोग नया जमशेदपुर प्रधान डाकघर में इंस्टॉल किए हैं। इस मशीन का खास बात यह है कि कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक कस्टमर इसमें आ करके और स्वयं के द्वारा जो है स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर सकता है। 500 ग्राम तक का आर्टिकल इसमें आराम से बुक हो जाएगा और जो ऑनलाइन पेमेंट है QR कोड के माध्यम से, इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है और बुकिंग करने में जो है काफी कम समय लगता है। 30 सेकंड से 1 मिनट में एक आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। जमशेदपुर प्रधान डाकघर में बुकिंग का जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा है, एक अलग तरह का सेवा जो हम लोग शुरू किए हैं।
1: जमशेदपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। शहर के विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों में रथ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, सजावट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर समितियां रथ को अंतिम रूप देने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियों में जुटी है। प्रशासन की ओर से भी रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और आवश्यक नागरिक सुविधाओं की तैयारी की जा रही है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और ज़िले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में कुछ फिल्मी नगमें।

दिल जला फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार थे इंदीवर और संगीतकार बप्पी लाहिरी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक रंग के अंतर्गत किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में फिल्मी नगमे। कार्यक्रम की अगली पेशकश है हत्या फिल्म से, आवाज़ें हैं जी हाँ किशोर कुमार और आशा भोसले की। शब्द रचना इंदीवर की है और इसकी तर्ज बनाई है बप्पी लाहिरी ने।

वक्त की आवाज़ फ़िल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था इंदिवर ने और संगीत से सवारा था बप्पी लाहिरी ने। एक रंग कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं सच्चे का बोलबाला फिल्म से। गीतकार हैं अमित खन्ना और संगीतकार बप्पी लाहिरी।

0: सच्ची का बोलबाला फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार थे अमित खन्ना और संगीतकार बप्पी लहरी। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खुला आकाश। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं मनीष कुमार मिश्रा से उनकी स्वरचित कविताएं।
1: जी नमस्कार, मैं मनीष कुमार मिश्रा। सबसे पहले एक मुक्तक

अब एक गीत लिखने का प्रयास किया है जिसका शीर्षक है कहता है जंगल स्वीकार लो हमें, ये बोल हैं। आप सब सुने, एक संदेश भी है, जंगल क्या कहता है हम लोग से।

कहता है जंगल स्वीकार लो हमें। अब अगली रचना यह भी संरक्षण पर आधारित है, यह संदेश आप लोग तक जाए। आज इसकी आवश्यकता घर बसाने के लिए, आज इसकी आवश्यकता घर बसाने के लिए, दे रहा संदेश मैं पौधा लगाने के लिए। आज इसकी

लिए अब एक नई रचना जो यह एक समाज के प्रति संदेश है हमारी एकता को लेके, इसका शीर्षक मैंने दिया है मैं चाहता हूँ। सुने, मैं चाहता हूँ हर जगह इंसान ही मिले, मैं चाहता हूँ हर जगह

इन उड़ते परिंदों को अब मकान भी मिले, इन उड़ते परिंदों को अब मकान भी मिले, सच्चाई पर चले हैं वह निशान भी मिले, इन सोते हुए सपनों में उड़ान अब मिले, इन सोते हुए

0: जब कभी मिले तो हम इंसान बन मिले, जब कभी मिले तो हम इंसान बन मिले। इन साहित्य विद्वानों से मनीष जब मिले, इन साहित्य विद्वानों से मनीष जब मिले, मैं चाहता हूँ आपसे आशीष ही मिले, मैं चाहता हूँ आपसे आशीष ही मिले। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश। इसके अंतर्गत आपने सुना मनीष कुमार मिश्रा से उनकी स्वरचित कविताएं। इसी के साथ खुला आकाश कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

आज की फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, समीर के बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म के इस नगमे से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार अन्नु मलिक। तो आइए सुनते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से ये गीत।

दरार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं अभिजीत, साधना सरगम और साथियों की। राहत इंदौरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था अनु मलिक ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

त्रिदेव फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गाया था मनहर उदास और अलका याग्निक ने, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसकी तर्ज बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। इसी नगमे के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश गान। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए क्रांति फिल्म से ये देशभक्ति गीत। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की। संतोष आनंद ने इसे लिखा है और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

क्रांति फिल्म से भी आपने ये देशभक्ति गीत सुना। आवाज़ें थी महेंद्र कपूर और साथियों की, संतोष आनंद के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। अगला गीत आइए सुनते हैं कर्मा फिल्म से। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

इसी देशभक्ति गीत के साथ ही देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देशगान अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। समाचारों के लिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया आप बने रहें हमारे साथ।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास।

0: आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
0: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
0: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
0: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए

0: सुरक्षा को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
2: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
4: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
5: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन

0: निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि चार अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
4: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
3: Here is more from a correspondent covering the Prime Minister's visit.
5: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Mr. Modi said the relationship

0: Nifty dipped 32 points to settle at 24,399. Both the stock market indices dropped 0.13%. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.3%, while the small-cap 100 index lost more than 0.5%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 44 paise to close at 94 rupees and 96 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
1: On to sports. In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. England defeated India by 4 wickets in the second T20 match on Saturday in Manchester. The first match was washed out due to rain. In the Wimbledon tennis, world number one and defending champion Jannik Sinner has stormed into men's singles semi-final, beating Jan Lennard Struff of Germany in London this evening. In women's singles, Coco Gauff advanced to the semi-finals, defeating fellow American Jessica Pegula in a thrilling quarter-final match. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in the round of 16 match in Atlanta tonight. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Later in another round of 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver at 1:30 a.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of Green Ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after a landslide hits Wayanad Tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India. And in men's cricket, India take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जुनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगम में 5 T20 मैचों की सीरीज का 3रा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमनो इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा बहरी सलामती तिजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: मोरी अंगना।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को। आज

अनिल विश्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल विश्वास के पिता थे जेसी विश्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल विश्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल विश्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल विश्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल विश्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल विश्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल विश्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी वानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल बिस्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत, आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म

रोटी आई, जो अनिल विश्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल विश्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

0: जैसे इसके अलावा अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल बिस्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी, अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

क्रांति फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों की। शब्द रचना संतोष आनंद की थी और इसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आई सुनते हैं कर्मा फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, मनर उदास और सुखविंदर सिंह की। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी और मौसिकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कर्मा फिल्म से भी आपने ये गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गाया था अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और सुखिंदर सिंह ने। अगला गीत आइए सुनते हैं गोपी फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

ताजमहल फिल्म से अभी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, साहिर लुधियानवी के बोल थे और रोशन का संगीत था।

पहचान फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ मुकेश की थी। संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आइए सुनते हैं अंदाज फिल्म से, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

सच्चे का बोलबाला फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गाया था किशोर कुमार ने, अमित खन्ना के बोल थे और बप्पी लहरी का संगीत था। कार्यक्रम का अगला गीत आई सुनते हैं सौतन की बेटी फिल्म से। संगीतकार हैं वेदपाल और गीतकार सावन कुमार। गाया है लता मंगेशकर ने।

मेरी जंग फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मेरी जंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म कर्ज से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे टी20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।